हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई 2026। सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा की अब शुरुआत होती है।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3

0: लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से मीडियम वेव 266.66 मीटर पर। आइए दिन की शुरुआत करें इष्ट स्मरण के साथ, सुनते हैं भक्ति संगीत वंदना।

सुबह की बेला, पक्षियों की चहचहाहट, खिड़की से आती शीतल पवन की लहर और मन की शांति। इस रूहानी सुबह में आप सभी का स्वागत है वंदना में।

हर सुबह हमें एक नया मौका देती है खुद को खुद से जोड़ने का। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पूरी दुनिया की जानकारी रखते हैं, पर मन में क्या चल रहा है ये देखना भी तो ज़रूरी है। आइए परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि जिन्होंने हमें ये खूबसूरत जिंदगी दी है।

छोटी सी कहानी है। एक बार हवा के साथ उड़ता हुआ एक छोटा सा बीज आसमान में भटक रहा था। अचानक वो बीज एक कठोर पत्थर की गहरी दरार में जा गिरा। चारों तरफ अंधेरा, न मिट्टी, न पानी, न कोई हलचल, सिर्फ सन्नाटा और कठोर दीवार। बीज डर गया। उसे लगा जैसे उसकी यात्रा यहीं ख़त्म हो गई। दिन बीते, मौसम बदला, बारिश आई और पानी की कुछ बूंदें उस दरार में रिसकर पहुंच गई। धीरे धीरे नमी बनने लगी और उस नमी ने बीज को छू लिया। बीज में जो जीवन था वो धीरे धीरे जगने लगा और कुछ समय बाद इस कठोर पत्थर से एक छोटी सी हरी कोंपल बाहर निकल आई। कहानी की सीख है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही समय और थोड़ा सा धैर्य हमें अपने अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने में मदद करता है।

एक प्यारा सा विचार है कि प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। तो चलिए अपने हाथों को जोड़िए, आंखें मूंदिए और सुबह की इस बेला में खुद को खुद से रूबरू करते हैं।

हम हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। क्या कभी बैठकर इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे पास है वो भी तो कई के पास नहीं है।

दिन भर में सुबह 5 मिनट का मौन हमारी पूरी ज़िंदगी में सकारात्मकता भर सकता है। स्वस्थ रहें, मुस्कराते रहें, दूसरों की मदद करें और नफ़रत से दूर रहें। ये था आज का हमारा वंदना कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे वंदना। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, आइए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे 6:40 पर श्री रामचरितमानस गान। सदाबहार नगमों का लुत्फ उठाइए सुबह 7:00 सुगम संगीत 7:45 पर। साढ़े 8:00 आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लेक सिटी पर एक साथ सुनना ना भूलें प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। आज है फिट लाइफ मंडे। टुडेज ग्लांस में आज जानेंगे विश्व

तो उठाइए सुबह 7 बजे सुगम संगीत 7:45 पर। साढ़े 8 बजे आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लेक सिटी पर एक साथ सुनना ना भूलें प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। आज है फिट लाइफ मंडे। टुडेज ग्लांस में आज जानेंगे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, आज की प्रमुख खबरें होंगी और आईपीएल अपडेट भी होगी ही। हेल्दी हैबिट्स में हमारा आज का टॉपिक रहेगा भोजन और नींद का सही संतुलन। सिटी अपडेट्स में जानिए आकाशवाणी वॉकेथन के बारे में जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। शहर सुनसान बढ़ता तापमान ये विषय रहेगा बातचीत का और लिसनर्स कनेक्ट भी होगा। श्रोता अपने व्हाट्सएप मैसेज हमें भेज सकेंगे। आज व्हाट्सएप आज के कार्यक्रम के बारे में होंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे 9462697568। बजे का समय रहेगा कार्यक्रम यादों के झरोखे से। महिला जगत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 1:05 से। आज की थीम है नए स्टार्टअप की कहानी पर आधारित और जरा सोची के अंतर्गत आप सुनेंगे सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हमारी जिम्मेदारी। बातचीत का विषय रहेगा महिलाओं में हार्मोन्स बदलाव और खानपान। चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, विश्व एड्स टीका दिवस पर और कामकाज की बातें करेंगे शहर में आजकल। इस पर होगी घरेलू आयल ब्लॉगिंग एक डिजिटल मंच, घरेलू आदतों में जानेंगे ब्लॉगिंग एक डिजिटल मंच। किसानों को जानकारी मिलेगी कृषि जगत कार्यक्रम में 2:30 बजे। विषय रहेगा किसान की बात में कि बीजों की किस्म और उत्पादकता की जानकारी। राजस्थानी गीत भी सुनवाएंगे और जानकारी होगी पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक पर। श्रोता सुनेंगे युवाणी शाम 5 बजे, विषय विज्ञान और तकनीक। सबसे पहले इस पर जानकारी दी जाएगी और ऐतिहासिक स्थानों में आज आप जानेंगे एक और नए सब्जेक्ट पर बात होगी ऐतिहासिक स्थानों में और बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप इस विषय पर बातचीत आपके साथ की जाएगी। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे और बर्टन रसेल इन पर भी जानकारी दी जाएगी। रीमा लागू, मनुश्री छिल्लर इन सभी का जिनका जन्मदिन है या जो आज के दिन से जुड़े हुए सेलिब्रिटी हैं उन पर भी जानकारी मिलेगी। और आज का इतिहास, शेयर बाजार और खेल समाचार भी आप सुन पाएंगे प्रोग्राम युवाणी शाम 5 बजे। अब आपको बताएं शाम को खेती और घर कार्यक्रम की जानकारी। 7 बजे होने वाले इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे चौपाल री बात, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और भंडारण पर। राजस्थानी गीत भी सुनवाएंगे, जानकारी होगी एग्रोमेंट एडवाइजरी पर, साथ ही जानकारी मिलेगी किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर और जानेंगे ई मित्र और सरकारी लाभ इस विषय पर।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख ले तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

राम राम किसान भाइया, राम राम। खेती में आज कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाई ने पेमा भाई रो राम राम। देखो सा किसान भाइया, अपना कार्यक्रम भी टेम वी और मुँह आयो आपने घनी सारी जानकारी देवर वास्ते। तो देखो सा खेती में आज कार्यक्रम में हर बार जो है बाण की टेम जो चल रही है वी टेम पे खेती बाड़ी रकाम काज कई कई वेश का अणी संबंध में जानकारी लेना आवा सा। तो देखो सा बाण चल रही हो मई रो महीनो, हर तावड़ो जो है घणो जोर को पड़ रही है और गर्मी में देखो अपना घना हारा खेती संबंधी काम काज चल रहा है। और मई का महीना में जो है आपकी खेती संबंधी जो काम करावण में देखो औषधीय फसलों की बुआई को काम भी आपकी करा हाँ। अब ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है अणी वास्ते आज का कार्यक्रम में अंडी जानकारी लेना आया हाँ। तो देखो मई में देखो अपना औषधीय फसला है वणा की बुआई वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण टेम मजो है यार वह है। और खास तौर पर वणा क्षेत्र में जटे तापमान बत्तो रहे गर्मी बत्ती पड़े मानसून आवा वाला वह वणु पहले की स्थिति बने और अणी वास्ते का यो क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी वह औषधीय फसला रहा वास्ते। तो अणी टाइम पर लगाई गई जो फसला है वह वर्षा के टाइम पे जो है पूरी लाभ उठाती दिखी रहे और किसान भाई जो है कम लागत में है जो अच्छो मुनाफा में कर सके। अब देखो कि अब जानकारी दें मई का महीना में आप ही औषधीय फसलां कई कई करा हाँ और वणा की विशेषता कई कई रेवे है। तो देखो सर बात यह है कि मई रा अंत में और जून की शुरुआत रहा महीने आप ही गर्मी यदि वत्ती पड़े तो वणी टाइम पे नरे हारा काम जो करा हाँ वण में देखो औषधीय फसलों की बुआई करा वण में एक नाम आवे कलिहारी। ये एक कीमती औषधीय बेल है जणी को जड़ा जो है और उनका बीज जो है अणा की मांग जो है बाजार में रहवे है। बुवाई की टाइम पे देखो अपने मई को अंतिम सप्ताह जो है वो अण में जो है मान्यो क्यों है। उपयोग जो बात करना तो देखो गठिया बादी कैंसर जैसी बीमारियों वास्ते दवाएं बनाओ में जो है अण को इस्तेमाल वे है। और उत्पादन जो है देखो अण की जड़ा जो है मतलब कंद अण में जो बुवाई की वेवे है। और अणी बार जो देखो कि लागत देखा घना आला साल जो आप यानी कि फसल आप अच्छी तरह ले सका सा। दूसरी जो औषधि फसल है सतावरी, सतावरी की रोपाई जब वास्ते आप ही करा कि मई में आप ही जो है नर्सरी तैयार कर देना चाहवा और मेड़ा रो ऊपर जो है रोपाई करता दिखा जो यो काम आप ही कर सका। मिट्टी की बात करा तो रेतीली दोमट मिट्टी जो है वह सतावरी की बुआई वास्ते अच्छी मानी गई है। और महत्व की बात करा तो देखो महिला का स्वास्थ्य संबंधी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाव संबंधी जो है सतावरी को उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जावे सा। लाभ की बात करा तो देखो सूखी जड़ा है जो है का मूल्य बाजार में जो है बहुत ही अच्छा रहे और ऊंचा दाम पे बिके है। सफ़ेद मूसली की बात करना तीसरी औषधीय फसल है तो देखो मई का दूसरा पखवाड़ा महीने सफ़ेद मूसली ने अपनी कंद के रूप में जो है बुआई कर सका हाँ। और बुआई की तकनीक की बात करना तो हमेशा ऊंची मेड़ जो है वणी पे इनकी बुआई वेवे है। और टेम री बात करना तो वर्का छाटा आओ पहली जो फुहार वाली जो टेम है अन टेम पे बुआई जो है इनकी फसल तैयार वेवे और देखो कि सफ़ेद मूसली उग जावे। और बाजार की बात करना तो देखो कि इनकी बाजार में बहुत ही ज़्यादा मांग है शक्तिवर्धक औषधि जो है अन्न कही जावे। और पचे देखो औषधीय फसल जो और कई वे सके तो वह है अकरकरा। और अकरकरा एक ऐसी औषधीय फसल है जण की जड़ा महीने और फूल है जो है अणा को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जावे। उपयोग की बात करें तो देखो दांत का रोग वे गया और गला में खराश संबंधी रोग वे गया और अन्य तरह के जो रोग और भी वह पक्षाघात संबंधी रोग वे गया तो वणा का इलाज वास्ते है अकरकरा जो है अणी को इस्तेमाल वेवे है। और जलवायु की बात करें तो देखो फसल जो या अणी की वेवे वा तेज धूप सहन करवा वाली फसल व्या करें अणी वास्ते मई का महीना में या जो है तैयार करने को लाभकारी आप ही काम कर सका हाँ। और देखो मई रा महीने खेती की तैयारी और भूमि प्रबंधन की बात करें तो आपने देखो कि तपती धूप में को उपयोग आप ही कर सका और भूमि सुधार का वास्ते इनको काम अच्छी तरह भेज सके। गहरी जुताई अपने करना चाहवा तो देखो मई रे महीने खेत की गहरी जुताई करना आप खुला छोड़ देना चाहवा जीखों की है कि मिट्टी रे महीने मौजूद हानिकारक कीट फंगस ये जो है अपना तावड़ारी गर्मियों जो है नष्ट हो जावे। और खाद प्रबंधन की बात करना तो प्रति एकड़ 10-15 टन जो है सड़ी दिखी गोबर री खाद और वर्मी कंपोस्ट अपने जो है औषधीय फसलों की बुआई रा महीने मिला होना चाहिए। औषधीय फसलों के रासायनिक खाद और प्रयोग अपने न्यूनतम मतलब नी के बराबर करना चाहिए। वीणु को यह है कि औषधीय फसलों को जो तत्व है जो महत्व है वो जो है खत्म हो जाए आने वास्ते आप न्यूनतम इस्तेमाल करना तो एक ही शुद्धता वणिधि की रही सके। खेत को समतलीकरण की बात करना तो देखो बरखा के टाइम पे आप ही पानी रा महीने जो देखो खेत में नहीं रुके पानी यानी वास्ते अपन प्रबंधन करना चाहे अणी के वास्ते कही है कि डाल वाली जगह जो है

वो को अपना देखना पड़ेगा, उनको अनिवार्यता अपन रखनी पड़ेगा। अधिकांश औषधि फसलां जो है वह जल भराव का कारण जो है खराब हो जाए, तो वास्ते जल भराव की स्थिति नहीं बने इको अपन पूरी तरह ध्यान रखना चाहेगा। नर्सरी प्रबंधन की बात करें तो देखो मई का महीना में कई हारे फसलां जो है वहाँ की नर्सरी तैयार की जा सके, और यूँ कही है कि देखो जून जुलाई मतलब आवाड़े टाइम पे जो है विकी रोपाई आप जो कर सकें, आने वास्ते मई का महीने जो है अपने नर्सरी तैयार करनी चाहिए। जैसान की देखो तुलसी, अब श्याम और राम नाम की जो तुलसी है वन की नर्सरी जो है आने टाइम पे तैयार हुए, तो तुलसी भी है एक औषधि पौधों है, औषधि फसल है, जन की खेती बाड़ी करना हारा किसान भाई करे और इनको लाभ लेवे है। और काल मेघ की बात करें तो देखो छोटी पौध तैयार करवा का वास्ते अपना मई को जो टाइम है जो वो सबों बढ़िया मान्य गयो है। इसके अलावा सावधानी की बात करें तो नर्सरी जो है अपना तेज लू मतलब गर्म हवा चाले वणियो वंचावणी चावे, ग्रीन नेट आप जनी बार लगावा के अपने जो वणियो अपने जो लू को बचा हुई जावे, या फिर छप्पर है वी को प्रयोग अपने करना चाहे। नियमित अंतरालों अपने हल्की सिंचाई मतलब छोड़ थोड़ा थोड़ा पानी दी पान जो है अपने करनी चाहे, क्योंकि एक नर्सरी जो है बढ़िया चल सके। मई रा महीने में पाणत और जल संरक्षण तकनीक की बात करें तो देखो वाष्पीकरण की दर जो है ज़्यादा वे जावे, तो आनी स्थिति में अपन जो पाणत को प्रबंधन भी अपन करना चाहे। ड्रिप सिंचाई आप भी कर सका, वणियो कोई औषधि फसलां जो है वण की जड़ार महीने नमी की आवश्यकता जो पड़े है, तो वण ने ध्यान में रखता है कि जो है पानी की जरूरत भी पड़े है। ड्रिप सिंचाई करा तो देखो अपन 40% तक जो है पानी की वंचित करता दिखाई जो है आप काम कर सका, और खरपतवार जो है वण ने भी अभी कम रख सका। मल्चिंग रे बात करा तो देखो मिट्टी रे महीने नमी बनाए रखवारा वास्ते फसल का अवशेष या पचे प्लास्टिक मल्च जो है वण को इस्तेमाल अपन ने करना चाहे, और इकों के ये कि जड़ा जो है अत्यधिक गर्म भी नहीं वेवे और मैं नमी बनी दिखी रहे। पाणत री टेम री बात करें तो देखो हमेशा सुबह री टेम पे या पचे हाजरी टेम पे जो है पाणत करना चाहवा, जिको कही है पानी को वाष्पीकरण कम वेवे और पानी जो है वंचो देखो रही सके। आर्थिक पक्ष की बात करें तो देखो औषधि खेती आप ही करा जो वन में खाली उगवा वाली सीमित नहीं रहे बल्कि बाजार में है वन के समझ भी अपन रखनी पड़ेगा। लागत री बात करें तो देखो पारंपरिक फसलां जो है वन के बजाय अपनी औषधि फसलों की खेती करा तो अपन 30% तक जो है ज़्यादा मुनाफा वे सके। अनुबंध खेती की बात करें तो देखो बड़ी कंपनियां जो है औषधियां तैयार करवा वाली है वे भी अपना किसान भाइयों अनुबंध करे है, जी को कही है किसान भाई जो है अनुबंध की खेती करता दिखे जो मुनाफा कमाई सके है। सरकारी सहायता की बात करें तो राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड जो बने दिखो है वणी के माध्यमों फसलार ऊपर जो है सब्सिडी दी जावे, तो अपना औषधि फसलां है वन में सरकार को सहयोग भी अपना किसान भाई ने अच्छी तरह मिल सके। कटाई के बाद प्रबंधन की बात करें तो मई रा महीने देखो पिछला कोई भी फसल जो है काटी लगी है वन के में देखो अपना अश्वगंधा की जड़ा है या बच्चे अन्य तरह की कई चीज़ है, तो वन में अपन ने ध्यान में रखना पड़ेगा और वणा को प्रसंस्करण जो है वे भी कर सका, भी छाया में सुखाई सका और देखो ग्रेडिंग आप ही अलग अलग तरीकों कर सका। तो ये सब बातों का ध्यान आप ही रखते देखे औषधि फसलों की जो है अच्छी तरह पैदावार कर सका। कुछ चुनौतियाँ भी वैसे का जन्म में देखो बाजार की जानकारी किसान भाई ने नहीं वे तो अपन ई नाम पोर्टल जो बने देखो सरकार की तरफ में विको इस्तेमाल आप भी कर सकें, रोग प्रबंधन आप ही औषधि फसलों में करा तो वने को फायदा अपने मिले। तो किसान भाइयों औषधि फसलों की खेती बाड़ी ई टाइम पर आप ही कितर कर सका यह जानकारी आपने दे दी है। जानकारी देवर वास्ते और भी है पर घड़ी नामू नाड़ा तो अब आप जावारी टाइम वेरी है चाला सा राम राम सा।

0: खेती में आज अभी आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता पंकज वैष्णव।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सदाबहार नगमों की शुरुआत में आपने सुना बुढ़ा मिल गया फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में, और उसके बाद कश्मीर की कली फिल्म से ये गाना मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में। कुछ गाने ऐसे होते हैं जब रेडियो पर बजते हैं ना तो दिल अपने आप धड़कने लगता है।

शैलेंद्र सिंह हेमलता का गाया ये खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था अखियों की झरोखों से। सुबह 8:30 बजे रेडियो लेक सिटी आकाशवाणी उदयपुर पर सुनना ना भूलें। नमस्कार उदयपुर, आज है फिट लाइफ मंडे। सबसे पहले टुडेज ग्लैंस में आप जानेंगे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर बातें होंगी, लोकल अपडेट्स और साथ साथ आईपीएल अपडेट भी होगी ही। हेल्दी हैबिट्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा भोजन और नींद का सही संतुलन। सिटी अपडेट्स में आकाशवाणी वकेथन @90years। और बातचीत होगी शहर सुनसान, बढ़ता तापमान के बारे में, और ये ना भूलें कि आज है लिसनर्स कनेक्ट, यानी कि श्रोता कार्यक्रम आधारित अपने संदेश हमें भेज सकेंगे प्रोग्राम के दौरान, जिन्हें हम पढ़कर सुनाएंगे नमस्कार उदयपुर के सेगमेंट में ही। और हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9462697568। चलिए सदाबहार नगमे में अगला गाना कौन सा है सुनिए।

कन्यादान फिल्म का ये गाना सुना आपने, और अब इसी के साथ आखिरी गाने की ओर बढ़ते हैं सदाबहार नगमों के इस प्रोग्राम में, जब जब फूल खिले फिल्म का है नाम।

तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझी हजारों साल। पंकज उदास का गाया ये कलाम आपने सुना और अब झांझरिया छनकाती गोरी आनंद राज आनंद की आवाज़ में सुनिए।

0: सुगम संगीत के इन सुरीले गीतों से खुली ठंडक के बाद अब बात आबोहवा की, बात पर्यावरण संरक्षण की।
1: जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां। जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है। जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास। क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं, आज काफी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे अस्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम जमीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें, तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया की 1/4 से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने के किनारे पर हैं।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। पॉडकास्ट
1: भारत में जल संकट के कारण 60% से अधिक लड़कियां हर महीने औसत 2 दिन स्कूल नहीं जा पाती, जबकि राजस्थान में अनुपस्थिति 5 दिन तक होती है, जो अक्सर लड़कों की तुलना में 2 से 10 गुना अधिक होती है।
3: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना
4: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना, और ये
4: मेरी गुड़िया थी ना।
5: पर दादी, आपके नाम?
6: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी।
0: सुनते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।
7: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रांगर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews

0: न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
3: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
5: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्नपत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय।

0: न्यायालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds back.

0: सुबह के 8:30 बज चुके हैं, आपके रेडियो सैर पर आ गया है आपका मनपसंद शो रेडियो लीक सिटी पर। नमस्कार उदयपुर, और आज है सोमवार, तो यह है फिट लाइफ मंडे। तो संडे का आलस उतारें, एक लंबी सांस लें, थोड़ा स्ट्रेच करें, मुस्कुराएं, क्योंकि एक नया सोमवार, नई उम्मीदें, नए सपने लेकर आपका इंतज़ार कर रहा है। और नए अंक के साथ आज मैं हूँ आपके साथ ज्योति,
1: और मैं कविता। बिल्कुल ज्योति, दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देने में किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए श्रोताओं, हमेशा बढ़ती ही रहेगी।
0: और आज के प्रोग्राम में, हाँ,
1: फिट लाइफ मंडे है ना, तो आज के जो सोमवार है उसमें हम क्या कुछ खास आपको बताने वाले हैं ये नमस्कार उदयपुर के कार्यक्रम में, तो वो है आज है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। आज एक और खास दिन है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्थानीय खबरें, आईपीएल अपडेट्स, ये सब भी हम आपको, इससे भी आपको अपडेट रखेंगे।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी की वॉकथन के बारे में जानकारी भी होगी, और इसके अलावा हम बात करेंगे शहर सुनसान बढ़ता तापमान, ये होगा हमारा सिटी अपडेट्स में। और खास बात कविता आज की है लिसनर्स कनेक्ट, यानी कि प्रोग्राम के बारे में आप अपने रिव्यू जो है हमें लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर याद रखिए 9462697568।
1: और एक और बात ज्योति, तुम भूल रही हो फिट लाइफ मंडे, जैसा कि हमने कहा उसमें हेल्दी हैबिट्स में आज हम बातें करेंगे भोजन और नींद का सही संतुलन।
0: बिल्कुल, थैंक यू।
1: अच्छा सा नींद, अच्छा सा गाना सुनाओ हमें।
0: बिल्कुल।

श्रोताओं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जागरूकता का दीप जलाएं, एड्स से मिलकर देश बचाएं, भेदभाव को दूर भगाएं, स्वस्थ जीवन का संदेश फैलाएं। जानकारी

0: श्रोताओं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जागरूकता का दीप जलाएं, एड्स से मिलकर देश बचाएं, भेदभाव को दूर भगाएं, स्वस्थ जीवन का संदेश फैलाएं। जानकारी ही बचाव है, सजग रहें और स्वस्थ जीवन को अपनाएं। और एड्स से लड़ाई में जागरूकता और शोध दोनों ही मानवता की सबसे बड़ी ताकत है।
1: जी, आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। 18 मई 1997 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने एक स्पीच में पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज रखा, कविता, कि आने वाले दशक में हमें एचआईवी को जड़ से खत्म करने के लिए एक प्रभावी वैक्सीन बनानी होगी। और उसी स्पीच की याद में अगले साल यानी 1998 से पहली बार ये दिन मनाया गया। अब ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी का पूरा फोकस इस बात पर है कि एड्स के बदले में जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है उसे बदला जाए, सिस्टम को मजबूत बनाया जाए और उन सभी डॉक्टर्स वॉलंटियर्स को थैंक यू कहा जाए जो अपनी जान जोखिम में डालकर क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित और असरदार एचआईवी वैक्सीन मिल सके।
0: बिल्कुल, एचआईवी से बचाव के लिए जागरूकता जो है, जो कहते हैं ना

0: तवा पंचवटी सर्कल के पास आएगा, फिर वहाँ से भी आगे बढ़ते हुए भारतीय लोक कला मंडल की ओर बढ़ेगा और फिर जब अंत में हम हमारे ऑल इंडिया रेडियो मोहता पार्क पर आएंगे तब इस वॉकथन का अंत होगा। तो हम यही कहेंगे कि चलते कदम जब जागरूकता का संदेश बन जाए, सेलिब्रेशंस जोश और एनर्जी के साथ हम सब मनाएंगे द माइलस्टोन अचीवमेंट ऑफ कंप्लीटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग।

0: बिल्कुल। और एक और जानकारी दे दें, राज्य सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने चिकित्सा विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन के लिए उदयपुर सहित प्रदेश के सभी शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्टाफ की अटेंडेंस रजिस्टर पर हाथ से नहीं बल्कि डिजिटल मोड से अटेंडेंस होगा और अटेंडेंस मैनेजमेंट ऐप नई डिजिटल मोड से अब स्टाफ की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित होगी। इससे क्या होगा, इससे इन स्वास्थ्य केंद्रों पर आमजन को मिलने वाली चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी।
1: बिल्कुल। और इन सारी अपडेट्स के साथ अब हम बढ़ेंगे गाने की ओर।
0: बिल्कुल।

0: IPL सीजन 19 अपडेट्स कविता।
1: बिल्कुल, कल के मैचेस की बात करें। 17 मई को दो मैच हुए, उसमें से जो 74 मैचेस होंगे ज्योति टोटल, है ना, उसमें से जो 61 वाला मैच था वो हुआ था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच। और इसमें आरसीबी, मतलब बेंगलोर की टीम, 23 रन से धमाकेदार जीत दर्ज करके उन्होंने अपना जो जगह है वो सिक्योर कर लिया है, मतलब कि
0: क्वालिफाई कर लिया है प्लेऑफ के लिए। यस,
1: बिल्कुल क्वालिफाई कर लिया है। और कल के मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं वेंकटेश अय्यर, है ना, और उन्होंने आरसीबी के वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों पर नाबाद 73 रनों की तूफानी पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और कल का दूसरा मैच की अगर हम जानकारी दें तो वो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट से ये मैच जीता और राजस्थान रॉयल्स ने पहले खेलते हुए जो रन बनाए उसे बहुत ही आसानी से उन्होंने 19.2 ओवर में चेज कर लिया, मतलब 197 स्कोर उन्होंने बना लिए। और उनके जो मैन ऑफ द मैच इस मैच के जो रहे वो रहे दिल्ली के गेंदबाज मिचेल स्टार्क, शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पहले नंबर पर तो है ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर पीछे पीछे आ रहे हैं गुजरात टाइटंस, तीसरे हैं हैदराबाद, चौथे पंजाब और पांचवें छठे के तो अब बात ही क्या करें, जिसका जैसे जैसे मैच होता जाएगा वैसे वैसे उनके
0: ऊपर आते जाएंगे।
1: बिल्कुल। और एक और जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में सुनने में तो हमें बताने में भी बहुत मजा आता है, वो है ऑरेंज कैप पर्पल कैप और मैक्सिमम सिक्सर्स। तो शुरू करते हैं मैक्सिमम सिक्सर्स से, जो कि अब तक के बल्लेबाजों ने मारा है। तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो है वैभव सूर्यवंशी का। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिम, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बच्चा। पता है ज्योति उन्होंने कितने सिक्सेस लगाए हैं? 43 सिक्सेस। और जो उनके पीछे पीछे आ रहे हैं ना अभिषेक शर्मा, वो उनसे बहुत पीछे हैं, उनका सिक्सेस का स्कोर है ओनली 37। तो वैभव सूर्यवंशी सिक्सर बॉय बन गए हैं। पर्पल कैप अभी आरसीबी के पास है। भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने 24 विकेट लिए हैं 13 मैचेस में। और ऑरेंज कैप की जानकारी दे तो साई सुदर्शन, गुजरात के ये बल्लेबाज हैं, उन्होंने 553 रन बनाए हैं। इनके बिल्कुल पीछे गुजरात के हैं शुभमन गिल, 552 रन पर हैं। और तीसरे नंबर पर आरसीबी के विराट कोहली 542 रन पर चल रहे हैं।
0: और चलते चलते आज के मैचेस की भी बात कर लें तो आज दक्षिण भारत की दो टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगी। दोनों का आज शाम मुकाबला होना है और हम अपने लिसनर्स से बोलते हैं प्रेडिक्ट करने को कि आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतने वाली है, हमें प्रेडिक्ट करके बताइए। व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर्स पर 9463697568।
1: आई विल गो विद हैदराबाद।
0: ओके, लेट्स सी।

0: नमस्कार, उदयपुर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम का शेष भाग जारी रहेगा 9:10 से। आइए अब सुने हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गोथेनबर्ग में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के तेवर फिर से तीखे। सीमावर्ती जिलों में आज हीट वेव की संभावना। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की।

0: दोनों पक्षों के बीच व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर सहयोग के लिए विचार विमर्श हुआ। यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री रहा, जिसे दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन के साथ संबोधित किया। प्रदेश में लोगों को जल संचय और मकानों तथा भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे जल संग्रहण कर बरसात के पानी का अधिकतम उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल संचय जन भागीदारी 2.0 और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की प्रगति की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहरों से लेकर गांवों तक लोगों और प्रशासन की इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के अनुदानित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन और दलहन के तहत ये राशि मंजूर की गई है। योजना के तहत राज्य में 70,000 फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा और किसानों को मूंग, उड़द, सोयाबीन, सरसों, तिल और अरंडी के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि मंत्री ने बताया कि बीज वितरण और फसल प्रदर्शनों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सवाईमाधोपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ 2025 में बड़ी राहत मिली है। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले के किसानों को अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए करीब 47 करोड़ 33 लाख रुपए की दावा राशि मंजूर की है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक लखपत लाल मीणा ने बताया कि जिले में बेमौसम की तेज बरसात से बाजरा, तिल और उड़द की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद कृषि विभाग और बीमा कंपनियों ने संयुक्त रूप से सर्वे कर किसानों के नुकसान का आकलन किया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 51,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में ये राशि डीबीटी की जा चुकी है। किसानों ने बताया कि आपदा की स्थिति में ये योजना उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
1: किसान भाइयों, राम राम सा। मेरा नाम मदन लाल जाट, ग्राम पुस्तला का रहने वाला हूँ और मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी 4 एकड़ जमीन का बीमा कराया। उसमें मैंने 2810 रुपये प्रीमियम दिया और 1,12,260 रुपये मुझे बीमा राशि के मिले हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी अपना बीमा कराएं, समय पर गिरदावरी करें और जो फसल है जिसकी का बीमा कराएं। धन्यवाद सर।
2: किसान भाइयों, राम राम। मेरा नाम मेहरबान सिंह है, मैं कुश्तला का रहने वाला हूँ और मैं 2023 से फसल बीमा करा रहा हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो मेरे इस साल में 5,315 मेरे बीमा के जमा हुए हैं और मेरे को इस साल 1,81,556 रुपये मेरे को बीमा के पास हुए हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कराए, जिससे अपन को फसल खराब हो तो उसका अच्छा मुनाफा मिले, अपने को लाभ हो। इसके बाद
0: पाली जिले में जनजातीय समुदायों के विकास के उद्देश्य से आज से पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि ये अभियान 25 मई तक चलेगा। जिले की दूर दराज की ढाणियों और गांवों में आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से 21 से 23 मई तक जनसुनवाई होगी। वहीं संतृप्ति शिविर और स्वास्थ्य जाँच शिविर भी लगाए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। कल 7 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ, वहीं 8 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा रहा। प्रदेश

0: के अधिकतर हिस्सों में पारे में 1 से 3 डिग्री तक का उछाल आया है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और कई क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने और हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहने की आशंका है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आज से 22 मई के दौरान तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है।
1: पिछले एक सप्ताह से हीट वेव की परिस्थिति है और कहीं कहीं पे नाइट टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर है। विशेष रूप से मई के महीने में जो थार रेगिस्तान क्षेत्र और आसपास का जो पाकिस्तान क्षेत्र है, इसमें जो हवाओं का पैटर्न है, खासकर जो सतह की हवाएं हैं और ऊपरी वातावरण की हैं, इसमें एक एंटीसाइक्लोनिक चक्रवाती, यूं कह सकते हैं प्रति चक्रवाती तंत्र बनता है और इसी के असर से सरफेस पर हीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल पिछले एक वीक से ये एक टिपिकल हीट वेव का स्पेल जारी है और अभी भी अगले एक सप्ताह 10 दिनों तक ये हीट वेव का स्पेल खासकर डेजर्ट क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थल क्षेत्र है, इसमें जारी रहने की संभावना है।
0: चूरू जिले के मानपुरा में एक खेत में बनी झोपड़ी में आग लगने से 2 बालिकाओं की मौत हो गई। वहीं दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना पनियाला के पास कार और ट्रक के बीच टक्कर से हुई। उधर अंबाला हाईवे पर एक कार के बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। आज विश्व संग्रहालय दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में देशी विदेशी सैलानियों और आमजन को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। वहीं पर्यटकों का स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया जाएगा। संग्रहालय दिवस के अवसर पर पाली में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जैसलमेर में भी थार हेरिटेज म्यूजियम में विरासत संरक्षण पर विचार गोष्ठी रखी गई है। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज विशेष रेलगाड़ी चलेगी। ये विशेष रेल सेवा 1 दिन के लिए संचालित होगी। ये ट्रेन आज सुबह 9:30 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होकर करीब 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वापसी में दोपहर 2 बजे रामदेवरा से रवाना होकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसका मंडोर, ओसिया और फलौदी सहित सभी निर्धारित रेलवे स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। सवाईमाधोपुर में नई वंदे भारत ट्रेन की गति का परीक्षण पूरा किया गया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रेलगाड़ी को कोटा मंडल के विभिन्न मार्गों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गोथेनबर्ग में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के तेवर फिर से तीखे। सीमावर्ती जिलों में आज हीट वेव की संभावना। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: वेलकम बैक उदयपुर। यह है आपका फेवरेट शो नमस्कार उदयपुर, आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लेक सिटी पर।

0: उदय पर रेडियो लेक सिटी आप सुन रहे हैं और कविता आज है फिट लाइफ मंडे। और वैसे आज मंडे है, हर सोमवार की सुबह जब अलार्म बजता है ना तो सुबह सुबह आवाज़ आती है कि भाई 5 मिनट और, तो बस 5 मिनट और, ये 5 मिनट हमारे 50 मिनट
1: वीकेंड के बाद वाली सुबह होती है ना सोमवार की, इसलिए।
0: और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फूड और स्लीप, बैलेंस होना चाहिए ताकि मंडे मॉर्निंग हमें ऐसे हैंगओवर ना हो।
1: बिल्कुल, तुम्हारा कहना सही है, भोजन और नींद का सही संतुलन बैठाना ही पड़ेगा। देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए ना पौष्टिक भोजन है ना, बैलेंस डाइट, अच्छी वाली और अच्छी नींद, दोनों का बहुत अच्छा बैलेंस बहुत ही जरूरी है। यदि हमारा खान पान सही हो लेकिन नींद पूरी ना हो तो गड़बड़, और नींद अच्छी ना हो और भोजन असंतुलित हो तो भी शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहता। तो दोनों का बैलेंस बनाना तो बहुत ही जरूरी है। क्या करें, समय पर संतुलित भोजन करें, भोजन में हरी सब्जियां, फल, दालें, प्रोटीन शामिल करें, ज़्यादा तला भुना और जंक फूड कम लें, दिन भर पर खूब अच्छी मात्रा में पानी पीते रहें और रात का खाना जो है ना हल्का और सोने से 2-3 पहले खा लें, 2-3 घंटे पहले खा लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये हेल्दी हैबिट है। और है ना, देखिए उदयपुर, क्योंकि बॉडी भी एक सुपर कंप्यूटर की तरह होती है कि जितना अच्छा फ्यूल होगा यानी कि हमारी न्यूट्रिटिव इंटेक होगा उतना ही अच्छा रहेगा, अच्छा चलेगा, और उतना ही इसको रिबूट करना भी जरूरी होता है कि
1: बिल्कुल। देखो, जैसे अभी हमने बताया भोजन से जुड़ी अच्छी आदतें, इसी तरह से ज्योति नींद से भी जुड़ी अच्छी आदतें होती है, जरूरी बातें होती है जिनका कि हम पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। जैसे कि रोज हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, अब इसके लिए क्या करें, देर रात मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम कर दें, सोने और जागने का समय जो है वो फिक्स कर लें, कुछ आसपास तक आप उसे कोशिश करें कि वो फिक्स हो जाए, और शांत एकदम और आरामदायक वातावरण में सोएं। तनाव कम रखने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा आप जरूर लीजिए।
0: जी कविता, आपने ये बताया पर हमें श्रोताओं से पूछना है कि आप हमें फटाफट व्हाट्सएप करके बताइए कि कौन सी बुरी आदत को आप गुड बाय कहने वाले हैं, और ताकि आपके दिन, आपकी सुबह ज्यादा खुशनुमा हो, एनर्जेटिक हो।
1: बिल्कुल, स्वस्थ शरीर की असली पूंजी है सही भोजन, सुकून भरी नींद, और जब ये दोनों साथ हो तभी जिंदगी बनती है फिट और शानदार। तो अच्छी आदतें अपनाइए, संतुलित भोजन और भरपूर नींद पाइए।

0: तो श्रोताओं, अब बारी है सिटी अपडेट्स की। मौसम का ये जो चक्र है ना, गर्मी का ये जो मौसम है, इसमें क्या बातें करनी है। जी हाँ, शहर सुनसान और बढ़ता तापमान। मौसम में शहर सुनसान है, हर चेहरे पर गर्मी का इम्तिहान है। हम सब इम्तिहान ही तो दे रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं इस गर्मी के मौसम में। सूरज बरसा रहा, आग लगातार है और दिन बढ़ रहा है ये तापमान। तपती सड़कों पर थम गए कदम हैं, गर्मी ने बदला शहर का हर रंग है। देखो, बिल्कुल सही बात है। इन दिनों हमारे उदयपुर शहर के जो शहर है ना, जो सड़कें हैं, वहाँ पे बहुत जगह काम भी चल रही है। बहुत सारे चौराहों पर काम चल रहा है, फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है। तो इन वजह से और भी लोगों का जो लेबर क्लास पीपल है, जो इंजीनियर्स हैं, जो इन फ्लाईओवर्स को बनाने की देखरेख में लगे हुए हैं, काम चल रहा है जोर शोर से, तो वहाँ उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल का यह समय है। इतनी गर्मी है और इन्हें दिन भर वहाँ काम करना पड़ रहा है, तो इस गर्मी के मौसम में उन्हें ज़रूर ज़रूर थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी छांव वाली जगह में अगर उन्हें मिल जाए तो वहाँ पे वो खड़े रह करके अपना काम करें, अपना लेबर करें, और खाने पीने का, विशेषकर पानी का बहुत अच्छा ध्यान रखें।
1: देखिए कि आप जैसे लिक्विड डाइट प्रेफर कर रहे हैं, और एक तो एक खास बात ये भी है कि गर्मी ने तो बहुत ज़्यादा भी ना खाएं, हैवी फूड ना खाएं, ये तो अवॉइड करना ही है। ऑयली ना खाएं, बहुत स्पाइसी ना खाएं वो भी, लेकिन बहुत सारा भी ना खाएं, क्योंकि बहुत हैवी सा लगता है ना गर्मी में तो, और उबकाई आती है।
0: एकदम सही है। तो बस पानी पीजिए, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, फलों का सेवन कीजिए। दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचिए। बाहर जाते समय छाता, टोपी और सूती कपड़ों का ध्यान रखिए और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनिए। ज़्यादा तला भुला मसालेदार भोजन मत करिए और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिए।
1: चलिए, तो फिर आप हमें बताइए कि 42 डिग्री के टेम्परेचर से बचने के लिए आप क्या जुगाड़ लगा रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर 9462697568।
0: बिल्कुल।

0: कोई तो छू जाए। जी हाँ, नमस्कार। उदयपुर कार्यक्रम का ये मंडे मॉर्निंग सेगमेंट है और श्रोता संवाद अब हम आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। किरण कुमावत जी, बड़े ही प्यारे से गनी खम्मा मैडम जी लिख रही हैं ज्योति। तो नमस्कार, उदयपुर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें जो भी आप जानकारी देते हैं ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। आज आपने जो IPL की जानकारी दी वो बहुत ही अच्छी लगी। वैसे आज जो है ना चेन्नई सुपर किंग्स जीते तो बहुत ही अच्छा लगेगा मैडम, क्योंकि हम MS धोनी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आज वह मैच खेलेंगे भी, तो आज का मैच बहुत ही शानदार होगा। चलिए लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, धोनी जी आएंगे तो जरूर चेन्नई जी के स्टार्स चमक जाएंगे। एक और बात ये लिख रही हैं कि मैम अभी गर्मियों है ना, तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां का अधिक सेवन करें और अब हमें ना जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही लिख रही हैं। और चलिए हमारे पास भी एक मैसेज है, यह है हिरणमगरी सेक्टर 4 से सुशील यादव, रेणु यादव लिख रहे हैं, आज का दिन विशेष की बात करें तो हमें फ़ख्र है कि हम मेवाड़, उदयपुर और राजस्थान के निवासी हैं। बेशक हम सभी को फ़ख्र है, यहाँ की विरासत विश्व प्रसिद्ध है। हमारा नैतिक दायित्व है कि इसे सहेज के रखें और उसमें अपना पूरा सहयोग भी करें। बहुत अच्छी सी बात आपने लिखी है। बुरा लगता है जब अतीत की अमूल्य धरोहरों पर लोग उन संदेश लिख देते हैं, बेतरतीब कुछ तस्वीरें उकेर के या कुछ भी लिख के चले जाते हैं, तो ये भद्दा लगता है। ये बड़ी अच्छी सी बात आपने लिखी है और इसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए कि ऐसा ना करें। चलिए प्रिडिक्शन जो है इनका, कविता, IPL मैच में चेन्नई की जीत होनी चाहिए क्योंकि धोनी भी आज खेल सकते हैं।
0: धोनी के बहुत सारे फैंस हैं। देखो एक और हमारे लिसनर हैं, उन्होंने ये मैसेज लिख भेजा है, कमल सुहालका जी कह रहे हैं कि आज आयर में हमारा बहुत बड़ा संग्रहालय है ना, तो पुरानी चीज़ों को देखने का मन करता है। साथ में झीलों, उदयपुर झीलों की नगरी में कई जगह हमें अपने आहड़ की सिटी पहले जो है वो भी है, और बागोर की हवेली को लेकर लोगों का को कहना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। आकाशवाणी उदयपुर लोकल विंडो और FM पर जानकारियाँ बहुत ही अच्छी होती है। ये भारतीय लोक कला मंडल में नए जो है वो भी बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित किया करते हैं वो लोग भी। और उनका लिखना है कि आकाशवाणी जयपुर अजमेर से जो समाचारों से जो जानकारी मिलती है वो भी उनको बहुत अच्छी लगती है। और आगे लिख रहे हैं कि युवाओं को जो है ना तंबाकू मिश्रित सिगरेट वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, चाय और सिगरेट का कोई भी तालमेल ना बैठाएं। पापा जी का, इनके पापा जी का कहना है, इन्होंने ऐसा लिख करके भेजा है। और क्या लिख रहे हैं, बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाए वाले जो हमारे ध्येय है आकाशवाणी, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। गर्मी ज़्यादा है, ध्यान रखें, मतलब इनकी जैसे हम पूरा पैकेज बनाते हैं ना, इन्होंने भी पूरा पैकेज बनाया।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारा प्रोग्राम ध्यान से सुन रहे हैं और हमें वापस रिप्लाई भी करते हैं। चलिए भारती का भी संदेश, कविता यहाँ पे लिखती हैं कि यही कहूँगी, सड़कें भली सुनसान हों पर अपनों का दिल प्यार से भरा होना चाहिए। खूब पानी पीजिए, IPL का आनंद लीजिए, सही खाना खाइए, भरपूर सोइए और हमारा रेडियो लेक सिटी सुनते रहिए। क्या बात है, आपने बड़ी सुंदर सा हमारी दिन की बात लिख दी,
0: बिल्कुल RJ स्टाइल में। एक और हमारे लिसनर हैं रुखसाना बानो रहमान, कॉलोनी उदयपुर से, आप जो जानकारियां देते हैं ना हमें बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच।
1: चलिए और इसी के साथ

0: तो श्रोताओं, आज का नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम अब संपन्न करने का वक्त हो रहा है, हमारे जाने का वक्त हो रहा है। फिर अभी मिलेंगे कुछ ही पलों में अगले प्रोग्राम में। तो हम इस प्रोग्राम से चलते हैं और हम कहते हैं कि जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि खुश रहने वाले लोग हैं ना, मुश्किलों को आसानी से पार कर लेते हैं।
1: तो चलिए आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त। आज मैं आपके साथ थी ज्योति
0: और मैं कविता।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। आइए अब सुने प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: गांठ भरे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
0: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी,
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, good. Okay, hey, it's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?

0: be good.
1: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds, and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
2: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
0: It has 7 colors.
1: So, children, whenever you see the clouds, they have different
2: shapes.
1: Yes, shapes. And they have different
2: colors.
1: Very nice.
4: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Buttilang Lingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
5: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, a 72-year-old tribal woman from Karnataka.
8: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
9: Encyclopedia of the forest she is called in Karnataka, तुलसी गौड़ा.
6: जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
10: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
11: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
12: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
11: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
13: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी

0: गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना?
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ देश बचाओ।

0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
2: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
3: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
4: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
3: अच्छा।
4: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
3: अच्छा।
4: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
3: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
4: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
3: अच्छा।
4: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
4: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
3: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
4: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
4: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है।

0: कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर पर।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: आकाशवाणी उदयपुर, सुबह के 10 बजे हैं और रेडियो पर पुराने ज़माने की खट्टी मीठी यादों की पोटली खोलने का समय हो चला है। ये प्रोग्राम है यादों के झरोखों से,

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग।
4: RBI कहता है,
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: आप सुन रहे हैं यादों की झरोखी से। आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन। हम जब सुबह उठते हैं तो सीधे काम की फिक्र, ऑफिस की भाग दौड़ दिमाग में आ जाती है। पर ज़रा कुछ देर दिल के जैरोखे को थोड़ा पीछे की तरफ ढकेलें और याद करें बचपन का सोमवार, जब संडे की रात को हम रोते थे कि मम्मी कल स्कूल नहीं जाना है। सोमवार की सुबह स्कूल प्रेयर में खड़े होकर चुपके से दुआ मांगते थे कि हे भगवान आज तेज़ बारिश आ जाए और स्कूल की छुट्टी हो जाए। कितनी मासूमियत थी ना उस दौर में।

यादों के जरोखे से इसमें आज हम बात कर रहे हैं उस दौर की, जब रविवार के बाद आने वाला सोमवार और वो बचपन कितनी मासूमियत भरा होता था। हम कोशिश करते थे कि सोमवार सुबह की तो हम पर कोई लोड ही ना हो, वैसे होता भी कहाँ था। हालांकि तब भी हमें ऐसा लगता था हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, स्कूल जाना भी तो एक बड़ा काम ही होता था और कोशिश होती थी कि किसी तरह छुट्टी मिल जाए। सारे बहाने लगाने के बाद भी जब छुट्टी नहीं होती थी ना, तो दोस्तों के साथ एक ही लंच बॉक्स से सभी का मिल बैठकर पराठे खाना, मिल बैठकर खाना खाना, हंसी मजाक, वो हंसी ठट्ठा याद आता है ना। ये संडे को भी संडे जैसा ही मज़ेदार बना देता था हमारा सोमवार भी। ऐसे सुहावने बेफिक्रे दौर शायद अब कम हो गए हैं, पर कुछ गाने सुनते हैं और उस दौर को याद करते हैं।

पुरानी यादों की जब भी हम बात करते हैं तो वो दौर याद आता है जब एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। टीवी पर चित्रहार देखने के लिए पूरा मोहल्ला एक घर में इकट्ठा हो जाता था। एंटीना को छत पर जाकर गोल गोल घुमाना, नीचे से चिल्लाना, आया क्या, अरे थोड़ा और घुमाओ, थोड़ा और घुमाओ। वो टीवी का सिग्नल नहीं था, एंटीना नहीं था, बल्कि पूरे परिवार और पड़ोसियों का आपस में जुड़ाव होता था।

सुबह की बढ़ती धूप, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर सदाबहार चैनल। आज सुबह स्टूडियो आते समय किराना की दुकान पर कांच के मर्तबान में वो ऑरेंज वाली टॉफ़ी नज़र आई। पैर अपने आप ही रुक गए और दिमाग सीधे पुराने दौर में चला गया, जब जेब में एक सिक्का होता था। हमें लगता था कि पूरे ब्रह्मांड की दौलत हमारे पास है और इसी एक रुपये में सभी दोस्त मिलकर पार्टी भी कर लेते थे, है ना।

यादों के जरोखे से आप सुन रहे हैं। एक दौर होता था जब हम अपनी गाड़ियों के पहिए घुमाते थे, घड़ियां देखकर नहीं बल्कि दोस्तों की आवाज़ सुनकर।

0: बातें तो बहुत बाकी हैं, पर घड़ी की सुइयां तो गुजरे ज़माने की तरह ठहरना नहीं जानती। यादों के जरोखे को धीरे से बंद करते हैं और ये गाना सुनवाते हैं। उम्मीद है ज़िंदगी में चाहे जितनी भी जिम्मेदारियां आ जाएं, बचपन की मासूमियत को अपने पास हमेशा संभाल कर रखेंगे, एक खूबसूरत याद में तब्दील करने के लिए। चलिए ये गाना सुनिए और प्रोग्राम यादों के जरोखे से मुझे दीजिए इजाज़त।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 11 बजे हैं, लीजिए अब सुनते हैं राजस्थानी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गोखड़ा।

गोखड़ा कार्यक्रम हुणवा वाला सगला भाई बहना ने स्वाति भाई सारो राम राम सा। देखो सा कार्यक्रम रो टाइम व्यो और मां आप रे वास्ते लेन आई गया हां अच्छा अच्छा और हव हव राजस्थानी लोक गीत। तो अबे कार्यक्रम री शुरुआत करा अणी गीत रे लारे।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी आपके नाम।
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: देखो सा कार्यक्रम गोखड़ा चाली रो है और अणी गोखड़ा कार्यक्रम रे मायने आप रे रेडियो सेट पे मां पहुंचाई रहा हां। अच्छा अच्छा और मन भावन सुहावना राजस्थानी लोकगीत। अब ये कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और यो आग लो राजस्थानी लोकगीत आप रे रेडियो सेट ऊपर पहुंचावा। हुणो सा आनंद लो सा।

देखो सा कार्यक्रम गोखड़ा चाली रो है और अणी गोखड़ा कार्यक्रम रे माई ने आप रे रेडियो सेट उपरे मा आछा आछा मन भावन और सुहावना राजस्थानी लोकगीत पहुँचाई रहा हाँ। तो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और एक और राजस्थानी लोकगीत आप रे रेडियो सेट उपरे पहुँचावा। हुणो सा आनंद लो सा।

देखो सा, आप आनंद ले रहा हो राजस्थानी लोक गीता रो कार्यक्रम गोखड़ा रो, और अबे अणी कार्यक्रम हो विदा लेवा रो टाइम वेग्यो सा। तो आप री स्वाति भाई सा ने आज्ञा दो सा, चाला सा, राम राम सा।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दो दिन के 11:30 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत का आगाज हमने कर दिया है रूप कुमार राठौड़ की दिलकश आवाज में। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें।
2: ओ।
1: बैंक से संपर्क

0: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
4: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले, आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है,
2: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन। सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुगम संगीत में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में कार्यक्रम का आगाज हमने किया था और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं पंकज कुमार की दिलकश आवाज़ में ये गज़ल।

बिल्कुल सही कहा, तू पास है दिल के तो दिल का अजब हाल सा लगे। जिसे हम पसंद करते हैं अगर वो हमारे दिल के पास है या हमारे आसपास भी है तो वाकई में हमारे दिल का हाल कुछ अजब ही होता है। पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल अभी आपने सुनी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली गज़ल आपके रेडियो सेट पर पहुँचाते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में अभी आपने सुनी दिलकश गजल सोचा ही था अच्छा बुरा। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी पेशकश अनुराधा पौडवाल की आवाज में आपके रेडियो सेट तक पहुंचाते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: और इसी के साथ सुगम संगीत को भी अब हम यही विराम देते हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 12 बज चुके हैं। लीजिए अब आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और आपके रेडियो सेट तक पहुंचाते हैं फिल्मी नगमे फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। पहला गीत मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाज़ में फिल्म हम से हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं।

0: श्रोताओं आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। परिंदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और सुरेश वाडकर की युगल स्वर में। कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: बहू जी मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
2: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
6: आगे सैलरी?
7: हाँ।
6: नहीं झुमके?
7: ना, पहले बचत,
6: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: RBI कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, दिलकश आवाज थी आतिफ असलम की। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। अगला गीत हद कर दी आपने फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं। एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत के इस सेगमेंट के इस नगमे को।

अलका याग्निक की दिलकश आवाज़ में गुमराह फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अगला गीत हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं फिल्म गुप्त से उदित नारायण, सुनीता राव व साथियों की दिलकश आवाज़ में। एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत के इस सेगमेंट के इस नगमे को।

आजा नचले फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना दिलकश आवाज थी श्रेया घोषाल और सोनू निगम की। श्रोता मापन ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उदित नारायण की आवाज में एक और गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचाते हैं। फिल्म का नाम है और प्यार हो गया से।

उदित नारायण की दिलकश आवाज़ में और प्यार हो गया फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं फिल्म बादशाहों से। दिलकश आवाज़ नुसरत फ़तेह अली और राहत फ़तेह अली खान की। एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट के इस आखिरी नगमे को और इजाज़त दीजिए आपकी रेडियो दोस्त स्वाति को इस वादे के साथ कि फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगी।

0: और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की अपनी 2 दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की कवायद में ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना की व्यापक रूपरेखा का उद्देश्य अगले 5 सालों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। यह स्वीडन का किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने आज केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुए समारोह में उनके साथ मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पार्टी ने 14 मई को श्री सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। राज्य विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आज विधानसभा के नए लोगों का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोगों की लॉन्चिंग की, साथ ही विधानसभा के चारों द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का अनावरण किया गया। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुसार नए नाम दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस नवाचार की पहल की। गौरतलब है कि डिजिटल पेपरलेस व्यवस्था, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक दीर्घाओं, डिजिटल संग्रहालय सहित अन्य नवाचारों से राजस्थान विधानसभा को देश में अनूठी पहचान मिली है। हाड़ौती अंचल के बुनकरों की हस्तकला कोटा डोरिया की वैश्विक पहचान मजबूत करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों से कैथून कस्बे के बुनकरों के हुनर को संवारने की कवायद शुरू की गई है। हाल ही में केंद्रीय सचिव संजय जाजू के दौरे ने इस मुहिम को नई गति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस विरासत को सहेजने और इसके आधुनिकीकरण के लिए स्थानीय कॉमन फैसिलिटी सेंटर को सशक्त किया जा रहा है।
2: इस मुहिम का सबसे खूबसूरत पहलू है एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध एरी सिल्क अब कैथून के पीटलूम पर कोटा डोरिया के धागों के साथ बुना जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुद्धता की गारंटी के लिए यहां पंच गौरव अभियान के तहत जरी टेस्टिंग मशीन भी लगाई जा रही है। इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और स्थानीय बुनकरों को उनके हुनर का सही वैश्विक मूल्य मिलेगा। यकीनन पूर्वोत्तर के सिल्क और हाड़ौती के हुनर का यह मेल कोटा डोरिया को सात समंदर पार लेकर जाएगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
1: प्रदेश में दिन के साथ अब रातें भी काफी तपने लगी है। कल 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर प्रदेश में

0: सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और श्रीगंगानगर सहित कुछ अन्य शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर मापा गया। उधर चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ में रात का पारा 33.2 डिग्री पहुंचने से गर्म रातों का दौर शुरू हो गया। कोटा में भी रात का पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक उछल गया। राजधानी जयपुर में भी लगातार तीसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां दिन का पारा 42.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। रैंकिंग में सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे और चेन्नई सुपर किंग्स पांचवें स्थान पर है। वहीं कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने प्ले ऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। दिल्ली में खेले गए मैच में कल 194 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 20वें ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स तालिका में 8वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं हमारी बहनों का अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: दीप बनकर जो हर घर को रोशन करती है, मुश्किल राहों में भी मुस्कुराना जानती है। जी हाँ, वही नारी आज अपनी नई पहचान लिख रही है। तो आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम महिला जगत, जहाँ हर चर्चा समर्पित है महिलाओं के स्वास्थ्य को, आत्मविश्वास को, उपलब्धियों को और आपके सशक्त भविष्य को। जी हाँ सखियों सहेलियों, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में मैं आपकी रेडियो दोस्त दीपिका स्वर्णकार
1: और आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शर्मा स्वीकार कीजिए
0: हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: कई सारी हमने सुनी कि भाई हमारे देश में कितने कितने मतलब मूल्य हैं, कितने आदर्श मूल्य हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए, और हमारे पूर्वजों की जो देन है ना, वो हमें आज सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिली है।
1: बिल्कुल बहनों, चाहे हमारी भाषा हो, चाहे हमारे लोकगीत हो, हमारे लोक नृत्य, हमारे रीति रिवाज, त्योहार, कला, साहित्य, ये सभी हमारी पहचान हैं और इतिहास के एक जीवंत प्रमाण हैं और वही हमारी विरासत है। और अगर हम इन्हें नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ इन जड़ों से दूर हो जाएंगी और हमारी पहचान को कहीं ना कहीं हानि होगी।
0: हमारे पूर्वज आज हमारे साथ नहीं है, पर उन्होंने हमारे हमारे और हमारी पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए सांस्कृतिक विरासत छोड़ी है कि
1: बिल्कुल
0: ताकि कभी भी जीवन में कैसा भी समय आए, हम उनसे सीख ले सके। जैसे चित्तौड़ का किला है, हम वहाँ जाते हैं तो हम विजय स्तंभ देखते हैं। विजय स्तंभ मतलब विजय का प्रतीक है, तो ये हमें स्तंभ बताता है कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए, उससे घबराओ मत, बाधाओं पर विजय प्राप्त करो।
1: बिल्कुल। तो सांस्कृतिक विरासत की गरिमा अगर हम बात करें तो जैसे भौतिक चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे किले हैं, चाहे मंदिर हैं, बावड़ियाँ हैं, स्मारक हैं और हस्तकलाएं हैं, पुरानी इमारतें हैं, और साथ ही साथ अमूर्त विरासत जो लोक संगीत हैं, लोक कथाएं हैं, बोलियां हैं हमारी,
0: बिल्कुल
1: पारंपरिक ज्ञान, लोक नृत्य, जैसे हम राजस्थान की बात करेंगे, जैसे कालबेलिया नृत्य है हमारा, घूमर नृत्य है, मांड गायन है, ये
0: हाँ,
1: सभी हमारी विरासत है और इनका संरक्षण करना हमारी जो है वो जिम्मेदारी बनती
0: और
1: है।
0: संरक्षण के साथ साथ हमें इसका सम्मान भी करना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी इतिहास को जो है, हम अपनी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। और बहनों, जहाँ तक हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि हम जो हैं वो एक परिवार की संचालिका कह सकते हैं, या अपने जो वैल्यूज़ हैं, अपने संस्कार हैं, वो देने वाली हम हैं, तो निश्चित रूप से हमारा खान पान, जो हमारे पूर्वजों का रहन सहन, उनकी बोली और अपने स्थानीय जो कला और जो संस्कृति है, उसको हमें बच्चों को सिखाना चाहिए।
0: ताकि
1: बिल्कुल
0: ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले।
1: बिल्कुल। लेकिन आजकल गरिमा हो क्या रहा है, कई तरह की चुनौतियां हैं, जैसे आधुनिकता जो आ गई है, या
0: हाँ,
1: बच्चों में जो एक वेस्ट, हम कह सकते हैं पाश्चात्यकरण जो आ गया
0: पाश्चात्यकरण आ
1: है ना,
0: गया है,
1: तो लोक संस्कृति का महत्व कहीं ना कहीं कम हो रहा है।
0: और लोक संस्कृति का महत्व तो कम हो रहा है कहीं ना कहीं। जो आजकल के हमारे बच्चे हैं, अपनी संस्कृति को लेके कहीं ना कहीं अंदर हीन भावना महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल, इसलिए दूर हो रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि जितने हमारे प्राचीन जो धरोहर है, कहीं ना कहीं वो प्रदूषण से भी ग्रसित हैं, मतलब लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम जो है वो अपने बच्चों में वो संस्कार कहीं ना कहीं डालने में, मैं तो कह सकती हूँ, थोड़े फेल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तभी नई पीढ़ी जो है वो अपनी परंपराओं से दूर होती जा रही
0: और
1: है।
0: तभी वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रही है।
1: इसलिए बहनों, बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय जो कला है हमारी, हस्तशिल्प है और लोक कलाओं को हम बढ़ावा दें, और ऐतिहासिक स्थलों की जो स्वच्छता है, सुरक्षा है, उसका हम ध्यान दें।
0: और अभी जैसे गर्मियां हैं तो अक्सर जैसे बाहर जाने का प्रोग्राम बनता है, तो बाहर जाएं तो उसमें सबसे पहले ऐतिहासिक चीज़ों पर पहले जाएं
1: बिल्कुल
0: जाएं बच्चों को उसके बारे में बताएं, तो उससे बच्चों का ज्ञान तो बढ़ेगा ही, कहीं ना कहीं उनमें ये अपने विरासत के प्रति सम्मान भी पैदा करेगा।
1: बिल्कुल। और साथ ही साथ आजकल जो है ना गरिमा, आज का
0: हाँ
1: जो युग है, अपन कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का युग है
0: हाँ
1: या बड़ा क्रांतिकारी युग है, तो आज के जो बच्चे हैं वो ज़रूर सोशल मीडिया के माध्यम से भी सांस्कृतिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर
0: बिल्कुल
1: उसमें इंटरेस्ट है, आप ब्लॉग्स लिखो, आप बहुत अच्छे से लेख लिखो, आप अच्छी अच्छी बातें लिखो, है ना, और साथ ही साथ विरासत जो है हमारी, उसके प्रति जागरूकता अभियान, जैसे हम कहीं भी घूमने गए हैं, चाहे हम अपने उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में जैसे सिटी पैलेस है, पिछोला है, बागोर की हवेली है, सज्जनगढ़ है, हमारे एकलिंगनाथ टेम्पल है ना, तो जहाँ भी युवा या बच्चे वहाँ जा रहे हैं, तो आप उनके उनका प्रचार प्रसार करो, वो कितनी अच्छी जगह है, क्या क्या हमारे पूर्वज छोड़ कर गए, क्या निशानी
0: और
1: है
0: उसके
1: ना।
0: इतिहास के बारे में भी अपने आसपास वालों को बताएं ताकि वो उस
1: बिल्कुल
0: पर सुन के गर्व कर सकें।
1: बिल्कुल। तो ज़रूर बहनों, हम अपनी संस्कृति जाने और ऐसी गतिविधियों में साथ दें, क्योंकि जिस समाज में संस्कृति जीवित रहती है,
0: वो
1: उसकी
0: समाज जीवित
1: पहचान
0: है,
1: बिल्कुल
0: वो
1: हमेशा
0: समाज
1: अमर
0: जीवित रहता
1: अमर
0: है।
1: रहता है।

0: तो गरिमा, हमने बहुत प्यारा सा गीत सुना हमारे भारत देश के बारे में और साथ ही साथ संदेश भी सुना। और अब हम बात कर रहे हैं हमारी बहनों से कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।
1: और अभी हमने गाने में भी हमारा जो भारत देश महान है, हमने उसकी इतनी

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आप भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: तो गरिमा, हमने बहुत प्यारा सा गीत सुना और खास करके सुना कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। बिल्कुल बहनों, ये समर्पित है आपको, क्योंकि नारी जो है वो जीवन की ज्योति है और ममता की मधुर सरिता है। संघर्षों की धूप में तपकर वो साहस की एक प्रतिमा है। बिल्कुल। तो हमारा जो अगला शीर्षक है गरिमा, हाँ, वो कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ा हुआ है, यानी महिलाओं में जो हार्मोनल बदलाव होते हैं,
1: हाँ,
4: और क्या हम खान पान पर विशेष ध्यान दें ताकि हम उसको बैलेंस कर पाए,
5: बैलेंस कर सके,
4: है ना?
5: अक्सर ऐसा होता है जब हार्मोनल बदलाव होते हैं तो कहीं ना कहीं महिला के स्वभाव पर उसका बहुत असर पड़ता है, और उससे कितनी बार देखा गया है कि महिलाएं थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है।
4: बिल्कुल।
5: तो उसमें खान पान एक बहुत अहम रोल प्ले करता है।
4: बिल्कुल बहनों, और ये हमारे जीवन के लिए और हमारे लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले गरिमा, हम समझते हैं कि हार्मोन्स हैं क्या।
5: हाँ।
4: हार्मोन्स जो है वो शरीर में रासायनिक एक संदेश वाहक हैं, जो आगे से आगे संदेश भेजते हैं अपने बॉडी को। ये शरीर की का बढ़ावा, शरीर को ऊर्जा देना, अपनी मूड को ठीक करना, नींद, वजन और प्रजनन और अपने स्वास्थ्य को ये नियमित करते हैं हार्मोन्स। और हम कह सकते हैं कि महिलाओं में जो है वो प्रमुख रूप से हार्मोनल

0: जो बदलाव हैं वो ज्यादा होते हैं पुरुषों की अपेक्षा,
1: ज्यादा होते हैं। उसका कारण होता है ना कि भाई महिलाओं पर काफी सारी जिम्मेदारी होती है, भाई घर के बाहर का भी उनको देखना है, घर का भी देखना है, तो कहीं ना कहीं इतनी जिम्मेदारियों का चिंता, जिम्मेदारियों के साथ देखिए चिंता आती है।
0: नहीं, शारीरिक बनावट भी कहीं ना कहीं है ना मायने रखती है, बिल्कुल बिल्कुल।
1: कहीं ना कहीं चिंता होगी तो कहीं ना कहीं शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा,
0: बिल्कुल शारीरिक बनावट के कारण ये होता है। और जैसे बहनों किशोरावस्था की बात करें तो शरीर में तेज बदलाव आता है, मासिक धर्म की शुरुआत होती है बेटियों में, साथ ही साथ उनका मूड जो है वो बदलता रहता है, स्विंग होता है, कमजोरी आती है, तो इसके लिए हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए,
1: क्योंकि खान पान ही है जो आपको इसमें बहुत मदद दे सकता है। भाई मूड तो आपका बिल्कुल स्विंग होगा, मतलब कभी लगेगा ये कर दूं कभी ये कर दूं, भाई वो उस समय ये एक दौर ही ऐसा है, पर अगर आप संतुलित खान पान रखेंगे, संतुलित दिनचर्या रखेंगे तो आप इस परिस्थिति से भी आराम से निपट सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो बहनों किशोरावस्था में जो आपकी बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जरूर आयरन युक्त भोजन लें, हरी सब्जियां लें, गुड़ चना लें, और कैल्शियम की बात करें तो दूध दही और पनीर उनको बराबर आप खिलाती रहें, साथ ही साथ प्रोटीन की बात करें तो दालें हैं, सोया है, मूंगफली है ना। और मासिक धर्म खास करके जो बेटियों का प्रारंभ हुआ है या आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो बहनों ये नॉर्मल बात है, थकान लगती है, पेट दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो उसमें भी आपको पर्याप्त नींद लेनी आवश्यक है, और फल फूल और सूखे मेवे आप नियमित रूप से खाती रहें,
1: और उस दौरान थोड़ा सा तेज मिर्च मसाले है ना, और खाद्य पदार्थ जैसे तले गले होते हैं इन चीजों से थोड़ा बचे, खाए पर इसकी मात्रा थोड़ी कम से कम कर दे।
0: बिल्कुल, और बहनों अभी बात की थी मैंने किशोरावस्था की, अब हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था अगर है तो यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से होते हैं, अधिक तेज़ी से होते हैं, क्योंकि महिलाओं में शरीर के अतिरिक्त पोषण की शरीर को आवश्यकता होती है, जिसमें फॉलिक एसिड की बात कर सकते हैं हम, कैल्शियम की बात कर सकते हैं, आयरन प्रोटीन ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको नियमित रूप से लेनी चाहिए क्योंकि तभी आपका शरीर उसके अनुकूल होगा और एक नए जीवन को, एक नई प्राणी को जन्म देने योग्य आप बन पाएंगी। साथ ही साथ हमारी स्टेज बदलती है गरिमा, हम रजोनिवृत्ति के दौर पर आते हैं है ना, मेनोपॉज जो हमारा होता है महिलाओं का, लगभग ये 45 से 50 साल के बीच में ये समय होता है।
1: और आजकल थोड़ा ये 40 से पहले भी
0: होने लगा, खान पान और वातावरण के,
1: खान पान वातावरण का काफी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा खान पान का और थोड़ा दिनचर्या का ध्यान रखिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहनों, इस चीज को मैं भी स्पेशली महसूस कर रही हूँ, अचानक से गर्मी लगती है और नींद की समस्या होती है, नींद नहीं आती है, मूड बदल जाता है, कभी गुस्सा आता है ना, और इस समय हमें जो भोजन है वो कैल्शियम और विटामिन डी वाला हमें भोजन खास करके लेना चाहिए, फाइबर युक्त आहार हमें लेना चाहिए, ताजे फल और सब्जियाँ लेनी चाहिए,
1: और उस दौरान थोड़ा सा योग प्राणायाम और हल्का सा ध्यान जरूर करें, और सुबह सुबह ताजी हवा में थोड़ा टहलें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पर्याप्त नींद और तनाव आपका कम हो, आपको जो अच्छा लगता है वो करें, क्योंकि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की आधारशिला होती है, तो हम अपने मूड को, अपने खान पान को जरूर अच्छा बनाए, और ये बहनों हार्मोनल बदलाव जो है वो एक जीवन का हिस्सा है और हम सही देखभाल से उसे अच्छा बना सकते हैं। तो अच्छे अच्छे अच्छे इसी दौर में सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, नहीं झुमके
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: बिल्कुल गरिमा, हमने बहुत प्यारा गीत सुना और कहीं ना कहीं हम उसमें डूब भी गए। ये जो देश है मेरा, हम अपने भारत देश की जितनी तारीफ करें, जितनी प्रशंसा करें, उतनी कम है।
6: और अभी हमने विरासत के संरक्षण की बात की थी ना, तो अपनी सखियों को मैं बताना चाहूंगी कि भाई आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, जो प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ ने संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय किया। इसका जो उद्देश्य है ना, जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता, उनके कार्य कलापों के बारे में जन जागृति फैलाना, तथा लोग संग्रहालयों में अपने इतिहास और प्राचीन परंपराओं को जाने।
5: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहनों कहते हैं ना कि इतिहास की शांत गलियों में यादों का संसार है, और संग्रहालय जो है वो केवल भवन नहीं है, वो सभ्यता का आधार है। इसलिए जहाँ हमने अपने देश की सभ्यता संरक्षण की बात कही, वहाँ संसार की जो सभ्यताएं हैं उनका भी हमें संरक्षण करना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत जो है उसको बढ़ावा देना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कहीं राजाओं की शान दिखती है, कहीं वीरों के बलिदान दिखते हैं, कहीं लोक कला मुस्कुराती है, तो कहीं विज्ञान को भी सम्मान मिलता है।
6: और इस बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 का विषय है, दुनिया में एकता, संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान की आवश्यकता।
5: तो बहनों, संग्रहालय वास्तव में होते क्या हैं? संग्रहालय ऐसे स्थान होते हैं जहाँ ऐतिहासिक वस्तुएं रखी जाती हैं, कलाकृतियाँ, पांडुलिपियाँ, वैज्ञानिक सामग्री और सांस्कृतिक धरोहर जो है वो सुरक्षित रखी जाती है। ये हमें हमारे अतीत से परिचित कराते हैं। और भारत के प्रसिद्ध संग्रहालय की बात करें तो जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय है, और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है। संग्रहालयों में भारतीय संग्रहालय भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है ना। और साथ ही साथ ये संग्रहालय जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और संस्कृति और परंपरा को बचा कर रखते हैं।
6: और ये तो हमारे विश्व संग्रहालय दिवस की बात हो गई। उसके अलावा आज एक और दिवस है दीपिका, विश्व एड टीका दिवस।
5: बिल्कुल,
6: विश्व एड टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एचआईवी और एड्स को रोकने के लिए सुरक्षित टीका विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। इस दिवस की शुरुआत 1997 में हुई थी। तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक भाषण के दौरान वैज्ञानिकों से अपील की थी कि वे जल्द से जल्द एचआईवी का टीका विकसित करें।
5: बिल्कुल, और बहनों एड्स जो है वो एक गंभीर बीमारी है जो एचआईवी वायरस के कारण होती है, और ये हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कमज़ोर कर लेती है।
6: पहला विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 18 मई 1998 को क्लिंटन के भाषण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था, और ये परंपरा आज भी जारी है।
5: बिल्कुल, और एड्स के रोगियों में, हाँ हम ये कहते हैं बहनों कि ये गंभीर बीमारी है, लेकिन ये नहीं फैलती है, यानी हाथ मिलाने से नहीं फैलती है, साथ बैठने से नहीं फैलती है, आपस में साथ में भोजन करने से भी नहीं फैलती है। आप उनसे गले मिलें या सामान्य संपर्क करें आप, तो उससे नहीं फैलती है। इसलिए एड्स के रोगियों से दूरी बनाकर रखना, उनसे गंदा और गलत व्यवहार करना, ऐसा आप ना करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा एड्स का रोगी है तो कहीं ना कहीं आपके प्यार और अपनत्व की उसको जरूरत है, ये ध्यान
6: रखें। क्योंकि आपका प्यार और अपनत्व ही कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित महसूस कराएगा और कहीं ना कहीं उसको ठीक करने में मदद करेगा।
5: बिल्कुल, और आज के दिन बचाव के उपाय हम जरूर बताएंगे, यानी कि सुरक्षित और जागरूक व्यवहार अपनाएं उसके साथ, स्वास्थ्य

0: सुई के जो उपकरण हैं वो स्वच्छ आप इस्तेमाल करें, समय समय पर उसकी स्वास्थ्य की जांच करवाएं और सही जानकारी और जागरूकता ज़रूर फैलाएं।
1: और विश्व एड्स टीका दिवस 2026 की थीम में इनोवेशन टुगेदर बिल्डिंग ऑन HIV फ्री फ्यूचर।
0: बिल्कुल, तो वास्तव में एड्स जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो उस व्यक्ति को भुगतनी है, लेकिन हम प्यार अपनत्व और एहसासों से उसे भर सकते हैं, उसे प्यार दे सकते हैं। और इसी बात के साथ हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सखियों, अब हम अपने कार्यक्रम के अगले भाग शहर में आजकल चलते हैं। 12वां अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान व सर समाज शिक्षक गौरव 2025 उदयपुर में मनाया गया। इसमें संभाग के कई सारे प्रतिभागी शामिल हुए। श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार भारतीय लेक्रोस टीम के कप्तान सुनीता मीणा को दिया गया। वाल्मीकि गौरव पुरस्कार 15 प्रतिभागियों को दिया गया। मेवाड़ वीर राणा पूंजा भील प्रतिभा पुरस्कार 74 प्रतिभाओं को सिविल सेवा और IIM जैसी प्रतियोगिताओं के लिए दिया गया। वीर बालक एकलव्य प्रतिभा पुरस्कार बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक लाने वाले 209 मेधावी छात्राओं को मिला। वीर शहीद कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 37 खिलाड़ियों को दिया गया। शहीद नानक भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार प्रेरक सामाजिक कार्य करने वाले 47 समाज सेवियों को दिया गया।
1: बिल्कुल, तो अभी गरिमा ने बहनों बताया कि कल हमारे उदयपुर में क्या क्या समाचार, क्या पुरस्कारों का दौर रहा, और उसके साथ बात करते हैं ब्लॉगिंग और डिजिटल मंच, जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज के युवा या हम सभी अभिव्यक्ति के नए रास्ते हमें मिले हैं। ब्लॉगिंग और डिजिटल मंच ऐसा माध्यम बन चुका है जहां कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, ज्ञान को, कला और अनुभव दुनिया तक पहुंचा सकता है। तो आप इनसे जुड़े रहें बहनें, और साथ ही साथ यादों, विचारों और भावनाओं से सजे इस सुंदर सफर को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे, फिर मिलने के बाद

श्रोताओं बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 हुए हैं। लीजिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और आपके रेडियो सेट तक पहुंचाते हैं आपके पसंदीदा फिल्मी तराने फिल्म संगीत कार्यक्रम के माध्यम से। पहला गीत अलका याग्निक की आवाज में इश्क विश्क फिल्म से।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में भावना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस सेगमेंट का अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म भाभी से।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो,

अनुराधा पोड़वाल और नितिन मुकेश की आवाज़ में भाभी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और आप आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में भारत फिल्म के इस गीत के साथ।

और इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 2:10 हो चुके हैं। समय है विकास चर्चा का। विकास चर्चा के अंतर्गत हमारा आज का विषय है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो लीजिए आपको साझा कराते हैं इस योजना से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली एक कल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और वंचित महिलाओं को धुएं वाले चूल्हों से मुक्ति दिलाना और उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य व पर्यावरण की रक्षा करना है।

इस योजना के कुछ मुख्य लाभ हैं जिनकी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहला लाभ है इस योजना का मुफ्त कनेक्शन। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बिना किसी सुरक्षा जमा राशि के LPG कनेक्शन मुफ्त मिलता है। दूसरा लाभ है इस योजना का मुफ्त सामग्री। कनेक्शन के साथ गैस सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा नली और उपभोक्ता पुस्तिका बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। इस योजना का तीसरा लाभ चूल्हा और पहली रिफिल। केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त गैस चूल्हा और पहला भरा हुआ सिलेंडर भी मुफ्त दिया जाता है। और इस योजना का चौथा लाभ है इस योजना से मिलने वाली सब्सिडी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति गैस सिलेंडर 300 रुपये की विशेष सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।

इस योजना के लिए कौन सी महिलाएं पात्र हैं उसकी जानकारी भी हम आपसे साझा करते हैं। आवेदक महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। महिला किसी भी गरीब या बीपीएल परिवार से संबंधित होनी चाहिए। परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के नाम पहले से कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। महिला के पास पात्र होने का प्रमाण जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज होने चाहिए।

इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जिसकी जरूरत होती है उसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। जो भी इस योजना में महिला आवेदन करती है, उस आवेदन करने वाली महिला का आधार कार्ड, परिवार का राशन कार्ड या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य निर्धनता प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। बैंक खाता, पासबुक और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और अंत में पासपोर्ट साइज फोटो।

इस योजना में आवेदन कैसे किया जा सकता है इसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं। इस योजना में आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है, ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए भी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या अपने नज़दीकी गैस एजेंसी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और ऑफलाइन प्रक्रिया में आप अपने क्षेत्र के LPG वितरक के पास जाकर उज्ज्वला योजना फॉर्म प्राप्त कर

0: करके उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवा सकते हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विकास चर्चा। विकास चर्चा के अंतर्गत हमारा आज का विषय था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: वाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार, साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की

0: दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: नियम स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी।

0: ना हमारे को थम पाएगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. मन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष

0: में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम ममता भाई सर, राम राम।
1: राम राम पेमा भाई, राम राम।
0: कृषि जगत सुनो वाला सगला किसान भाई ने अपनो
1: राम राम सा।
0: देखो सा किसान भाई, अपना कार्यक्रम भी टेम भी और मैं आया अपने घनी सारी जानकारी देवरा वास्ते, तो खेती बाड़ी संबंधी जानकारी देवा और लारे लारे अपने काम काज री बात कही वही सके, या सब जानकारी आपने देवा सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो पेमा भाई, आज आपा किसान भाई रे वास्ते जानकारी लाया हाँ कि बीजा री किस्म और वन्य उत्पादकता कई वे है सा। तो देखो सा, बीजा री किस्म और उत्पादकता कृषि विज्ञान रा दो सब महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो कणी भी फसल री सफलता और किसान री आय पे आपा देखा काफ़ी हद तक निर्भर करे है। मिट्टी में कणी गुणवत्ता रा बीज बोया गया है, बीज केवल एक पौधा उगावरा माध्यम नहीं है, बल्कि ये वे जो अनुवांशिक वाहक है ये तय करे कि भाई पौधों प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कतरो झेली पाएगा और वनी पैदावार कतरी वेगा सा।
0: देखो सा, अब बीज की विभिन्न किस्म की बात करें तो खेती बाड़ी रे महीने मुख्य रूपों तीन प्रकार की जो है बीज को उपयोग कियो जावे। जड़ में है देखो पारंपरिक और देसी बीज। वे बीज जनार के में किसान भाई पीढ़ियों संरक्षित करता दिखाई रहा है और बीज स्थानीय जलवायु मिट्टी ने के प्रति जो है अनुकूल है और अण की उत्पादकता जो है हाइब्रिड बीज की तुलना में कम वह सके, लेकिन अण में उगावा और खाद पानी की जरूरत कम पड़े है और लारे लारे जो है बीज के अलग साल अगले साल जो है सुरक्षित रखवा की प्रक्रिया वह सके सा।
1: बिल्कुल साहब। दूसरा अगर बीज रही आप बात करा पेमा भाई, तो वह है संकर या पचे हाइब्रिड बीज, जो आप देखा कि अलग अलग गुण वाली एक ही प्रजाति रा पौधा क्रॉस कराया जावे, जण्यू कई एक प्राप्त बीज हाइब्रिड कहलावे है। उरणारो जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिक पैदावार, रोगों लड़वारी क्षमता और फलारो एक समान आकार सुनिश्चित करनो है। लेकिन हाइब्रिड बीजारी सब बड़ी कमी यह है कि अणा ने हर साल नयो खरीदनो पड़े और पिछला साल री फसल बचाया गया बीज अगले साल में वतरी उत्पादकता नहीं देवे है सा।
0: एक व्यवसाय जीएम बीज अणि में कही है कि बीज में प्रयोगशाला महीने जेनेटिक इंजीनियरिंग का जरिया तैयार कियो जावे। अणि कणी भी दूसरा जीव में देखो कि पौधा में डीएनए डालन जो है विशिष्ट गुण जो है अण में तैयार किया जावे, विकसित किया जावे। जणी ने आप ही कह सका कि बीटी कॉटन अपना यानी एक अच्छा उदाहरण है और अणी बीज को उत्पादन में नई ऊंचाई मिले और देखो अणि में पर्यावरणीय प्रभाव जो है हमेशा बने दिखा रहे वैसा।
1: अबे आपा देखा उत्पादकता रो बीजा पे कई प्रभाव पड़े, तो देखो उत्पादकता सीधा आपा देखा संबंध बीज री जेनेटिक क्षमता वणारी शारीरिक शुद्धता है सा। एक उच्च गुणवत्ता वाला बीज आपा देखा अलग अलग तरीकों वणारी उत्पादकता ने आपा बढ़ाई सका। अंकुरण दर री बात करा तो उच्च गुणवत्ता वाला जे बीज है वणा में अंकुरण री शक्ति अधिक वेवे। यदि बीज स्वस्थ वे तो खेत में पौधा री संख्या पर्याप्त बनी थकी रहे, जण्यू प्रति एकड़ पैदावार भी बढ़े है सा।
0: सही कह रहे हो सर। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो आधुनिक किस्म का जो है अपना कीट है पचे बीमारियां है वहाँ के प्रति सहनशीलता बढ़ावा रखो जरियो देखो व्या करे और अणियों कही है कि फसल बर्बाद व्यवहार की अण को खतरो है वो कम भी जावे, कीटनाशक है वण को जो खर्च भी बंचे सा।
1: जलवायु अनुकूलन की बात करें तो बदलते थका मौसम में सूखा जैसी स्थितियां ने सेवा वाली जो किस्म है जैसे सूखो प्रतिरोधी वेग्यो धान है विपरीत परिस्थितियों में भी न्यूनतम उत्पादन ने सुनिश्चित कर सके है सा।
0: और पोषक तत्व का उपयोग की बात करें तो अच्छी किस्म का जो बीज है वह देखो मिट्टी में मौजूद उर्वरक ने बेहतर अवशोषण करे और जणियों कही है कि पौधा का विकास जो है तेजी में वैसा।
1: तो देखो खेतीबाड़ी में जैसो बीज वेगा वसो फल वेगा कहावत अपने पूरी तरीकों सटीक बैठे है। बीजारो सही चयन किस्म रो चुनाव उत्पादकता ने 15-20%

0: तक सीधी वृद्धि कर सके। आज रे टाइम पे आपा देखा पेमा भाई के जटे जनसंख्या बढ़ी रही है, कृषि योग्य जो भूमि है वह सीमित वेरी है और बीजारो जो अनुसंधान है वड़ी में निवेश करनो, किसाना ने प्रमाणित बीजारे प्रति जागरूक करनो, खाद्य सुरक्षा रे वाते अनिवार्य वेग्यो है। तो किसान भाई ने चावे कि वे अपनी क्षेत्र की जो जलवायु है, संसाधन है, वन्य अनुसारिक सही किस्म रो चयन करे सा।
1: या तो भी जानकारी और कार्यक्रम में आया हाँ तो राजस्थानी लोकगीत सुना सा।
0: हाँ सा।

0: तो ममता भाई सर, राजस्थानी लोकगीत सुनाए सर, कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और किसान भाई ने देवा पोस्ट हार्वेस्टिंग तकनीक की जानकारी। अब यह जानकारी कई वेवे पोस्ट हार्वेस्टिंग कई वेवे अनको कई लाभ वेवे यह जानकारी देवा सर।
1: बिल्कुल सा, देखो कृषि विज्ञान री वह शाखा है पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक, जो फसल की कटाई रे बाद लेने उपभोक्ता री जो थाली है वटे तक पहुँचवा रे बीच री जो सब प्रक्रिया है वणा पे केंद्रित है। भारत जैसा कृषि प्रधान देश में जटे फल और सब्जियां रो एक बड़ो हिस्सो लगभग 15-30% तक खराब वे जा, बटे पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन आपा देखा केवल आर्थिक लाभ रे वाते लिए बल्कि खाद्य सुरक्षा रे वाते भी बहुत आवश्यक है सा।
0: पोस्ट हार्वेस्टिंग तकनीक की ज़रूरत क्यों पड़े इनकी बात में बताओ कि देखो, फसल की कटाई के बाद में यदि पौधा का हिस्सा मतलब फल है, सब्जी है, अनाज है, जीवित रह सके तो देखो वन में श्वसन जो और वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वह भी जारी रहे। तो अणी में देखो कि अण को ढंग की प्रबंधित करवो जो है जो ज़रूरी है, और अपने पोषक तत्व की कमी है वह वही जावे अगर, और देखो वजन के और गुणवत्ता में गिरावट आई जावे, फफूंद और सूक्ष्म जीव जो है वणा में हमलों बढ़ जावे और किसान भाई जो है वण की उपज को सही मूल्य नहीं पा पावे, तो अणी वास्ते पोस्ट हार्वेस्टिंग जो तकनीक है वण की ज़रूरत पड़े है।
1: बिल्कुल सा, और कटाई रे बाद में आपा प्रमुख चरणारी बात करा पेमा भाई, तो कटाई रे बाद में प्रक्रिया री जो एक श्रृंखला रे रूप में आपा देखा, जणी में हर चरण री उत्पाद ने आपा देखा शेल्फ लाइफ ने बढ़ानो, भंडारण क्षमता ने बढ़ानो बहुत ही जरूरी है। अणी में सफाई और छटाई री बात में देखा तो खेतों आई थकी उपज में मिट्टी, धूल, अन्य जे अवांछित तत्व वे उनने सफाई रे बाद में उपज रे वणा रे आकार में, वणा रे रंग में, वजन में, परिपक्वता रे आधार पे वणा ने अलग कियो जाई सके। आणि बाजार में उत्पाद री जो आकर्षकता है वह बढ़े और खराब उत्पाद जो है स्वस्थ उत्पादन ने संक्रमित नहीं कर सके सा।
0: प्री कूलिंग की बात करना तो देखो फल है, सब्जी है, अणा के लिए सबों महत्वपूर्ण चरण है प्री कूलिंग, और कटाई के तुरंत बाद में उत्पाद और वन के भीतर देखो फील्ड हीट जो व्या करे मतलब खेत की गर्मी जो व्या करे वह वह है, और प्री कूलिंग के माध्यमों को ही है कि गर्मी ने आपकी तेजी निकाल सका, और जड़ियों को ही है कि श्वसन की दर जो है वह कम वे और उत्पाद अधिक जो है समय तक रह सके सा।
1: अभी आप ग्रेडिंग री बात करा तो ग्रेडिंग रो अर्थ वे गुणवत्ता रा जो मानक है वने आधार पे वर्गीकरण करनो। ए ग्रेड आपा देखा फल रे निर्यात रे वाते वे, ब्री ग्रेड आपा देखा बी ग्रेड जो है स्थानीय बाजार रे वाते वे, और सी ग्रेड जो है प्रसंस्करण जैसे कि जेम वेगियो, जूस वेगियो, अन्य वणावर वाते उपयोग कियो जाई सके सा।
0: और देखो कि खासकर सेब, नींबू और संतरा के फल जो वेवे वणा में खाद्य मोम मतलब कि जो वैक्स वेवे वणी में एक पतली परत चढ़ाई जावे जो यो अणि ने कहवे आपे वैक्सिंग, और यो नमी ने नुकसानों रोके और देखो फल जो है वणा ने चमकदार बनाए रखो और काम करे।
1: तो देखो पेमा भाई, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक में आपा देखा आधुनिक भंडारण की तकनीक और भी कई की वे है, या आपा जानकारी आगे जारी रखांगा। वणियो पहली आपके हो तो किसान भाई ने राजस्थानी गीत सुने ने वणारो मनोरंजन करा सा।
0: हाँ सर।

0: तो देखो पेमा भाई, कार्यक्रम में प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत सुनाए और अबे आपा किसान भाई ने जानकारी कराई रहा कि पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक कई वे है सा। वनी में आपा अबे देखो आधुनिक भंडारण की जो तकनीका है वनी बात करा सा। तो देखो उत्पादकता ने लंबा टाइम तक वणायो राखवारे वाते केवल आपा देखा गोदाम काफ़ी नहीं वे, बल्कि अलग अलग तरीका री उन्नत तकनीका री आवश्यकता वे है सा।
1: सही कह रहे हो साहब। और देखो अड़में जरूरत पड़े है कोल्ड स्टोरेज की। ये देखो तापमान और नमी ने नियंत्रित करवारो काम करे कोल्ड स्टोरेज। आलू है, सेब है, अंगूर है, जैसा जो उत्पाद है जो जल्दी खराब हो सके वड़ा ने कोल्ड स्टोरेज में राखन जो है वड़ा ने उत्पाद है वड़ा ने सुरक्षित राख सका। यो एक तरह को वरदान है अड़ा तरह का उत्पाद रहे वास्ते। और नियंत्रित वातावरण भंडारण की बात करें तो देखो अण में केवल तापमान ही नहीं बल्कि हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वणी ने भी बदलवारो काम करे। और फल जो है वो सुप्तावस्था में रहता दिखाई देखो महीना तक जो है खराब नहीं वे वैसा।
0: और अभी एक बात करा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर ही, तो यो कम लागत वाली तकनीक है जो वाष्पीकरण ने शीतलन रा सिद्धांत पे काम करे है, जो छोटा किसान रे वाते बहुत ही उपयोगी है सा। लारे लारे यहाँ पर बात करा पैकेजिंग और परिवहन री, तो देखो पैकेजिंग केवल कही वे कि उत्पाद ने ढाकवारे वाते नहीं बल्कि वणा ने सुरक्षा प्रदान करवा रे वाते वे आधुनिक जो पैकेजिंग है जैसे आपा देखा वणारो उपयोग करवा जेरा MAP जने आपा मॉडिफाइड एटमोस्फियर पैकेजिंग भी कहाँ, जो पैकेट रे भीतर गैसारो संतुलन ने बनायो रखे और परिवहन रे दौरान कोल्ड चेन रेफ्रिजरेटर जो ट्रक वे अन्य उपयोग ने सुनिश्चित करे है जेण्यू तापमान में उतार चढ़ाव नी वे हैसा।
1: और मूल्य संवर्धन की बात करें तो यदि कच्ची फसल ने प्रसंस्करण करवा के लिए नया उत्पाद बनाया जावे तो वन में मूल्य संवर्धन जो है वन आप ही कही सका। और यो पोस्ट हार्वेस्टिंग तकनीक को एक चरम बिंदु है। और जन में देखो कि टमाटर को केचप बनावनो है, दूध को पनीर घी या बच्चे पाउडर बनावनो है, अनाज

0: कही है कि सरकार की तरफ वो पीएम किसान संपदा योजना और ऑपरेशन ग्रीन्स के माध्यम जो कार्यक्रम चलाई रखा है, वणियों कही है क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जा सके। फार्मर जो है प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एफपीओ के माध्यम देखो कि छोटा किसान है सामूहिक रूपों तकनीक ने लाभ ले सके और अणी तरह काम कर सके सा।
1: तो देखो, पोस्ट हार्वेस्ट जो तकनीक है केवल खेती बाड़ी रो विस्तार नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक क्रांति है। और यदि आप अपनी उपज ने सही तरीके से प्रबंधन करा तो आप न केवल भूखरी समस्या ने हल कर सका, बल्कि विश्व रो जो फूड बास्केट है वो भी बढ़ सके। और वैज्ञानिक जो तरीका है वणा ने अपनाई ने प्रसंस्करण करीने उद्योगों ने बढ़ावा देने भारतीय जो कृषि है वो एक मुनाफा रो सौदो वही सके सा। और देखो आपा पेमा भाई, सब तरीका री आपा बीजारी किस्मरी भी कर लेवांगा, वन्य उत्पादकता रो भी ध्यान राखी लेवांगा, और लारे लारे आपा पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक ने भी अपने लेवांगा। लेकिन अगर आपा मिट्टी की जांच नहीं करावांगा तो भी आपने किसान भाई री उपज में अतरो फायदो नहीं वेगा सा। तो देखो मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है वह भी बात करा।
0: सही कह रहे हो सर। देखो आपकी जो खेती बाड़ी करा वड़े में मिट्टी की जांच कराओ अपना वास्ते बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मिट्टी की जांच जो अगर आप भी कराओ तो यो काम अपने है कि खेती बाड़ी रो काफ़ी काम जो अपना सरल वही सके और सरल वे तो देखो जो अपना उत्पादन है वो भी अच्छी तरह जो बैठे और अने को अपने फायदों किसान भाई ने मिले सर।
1: मिट्टी की जांच आप देखा खेतरा जो पोषक तत्व है वनों पीएच मान जैसे कि अम्लीय क्षारीय और वनी जो उर्वरकता की आवश्यकता है वनों पतो चाले है जणियों के वे की किसान भाई रे जो पैदावार है वह बढ़े। अबे जांच कदी कराने चाहे तो फसल बुवाई लगभग 1 महीना पहली और हर 3 साल में एक बार जांच कराने चाहे सा।
0: मिट्टी की जांच के बाद में प्राप्त जो अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपने मिले हैं वन के अनुसार आप उर्वरक को प्रयोग करना चाहवा, ताकि कई आपकी जो मिट्टी में कतरा अपना पोषक तत्व है कतरी की जरूरत है विका हिसाबों अपने एक अनुमान लाग जावे अपने मालूम पड़ जावे, तो वही हिसाब कर आपकी जो उर्वरक रो इस्तेमाल करेंगे तो एक संतुलन भी बने दुको रहेगा सर।
1: मिट्टी का नमूना लेवारी सही विधि की बात करा तो जगह रो पहले चयन करनो, खेत रा 8 से 10 अलग अलग कोना लेना वणियों आपने मिट्टी लेनी है। विधि की बात करा तो वी आकार रो 6 इंच रो 15 सेंटीमीटर रो गहरो गड्ढो खोदनो और खुरपियों एक तरफ री जो मिट्टी है वनी पपड़ी ने निकालनो हिस्सा। अब मिश्रण और पैकिंग की बात करा तो सब जे नमूना है वणा ने मिले ने 500 ग्राम मिट्टी छाँव में सुखई ने साफ थैली में वने राखनी हैसा।
0: अब जो भी नमूनों अगर आप ही ली दो है तो वणी का ऊपर जानकारी लिखी जानी जरूरी है, ताकि कई का अपना कहीं तरह को बदलाव नहीं हुए और जानकारी कई कई लिख सका वन पे। देखो किसान रो नाम लिखना है, खेत रो नाम और वणी को नंबर लिखना है, और पिछली फसल और अगली प्रस्तावित फसल के संबंध में जानकारी लिखनी है, और नमूना लेवा की तारीख भी वन में लिखनी जरूरी है सर।
1: और देखो मिट्टी की जांच करावांगा तो अपने किसान भाई ने कई कई लाभ मिलेगा वनी बात करा तो देखो उर्वरक की सही मात्रा अनावश्यक जो खाद रो खर्चो है वनी बचत वेगा, सही पोषण रो ज्ञान भी वेगा। फसलों रो चयन की बात करा तो मिट्टी रे स्वास्थ्य अनुसार किसान भाई सही फसल रो चुनाव कर सकेगा। और मृदा सुधार की बात करा तो मिट्टी रो पीएच अम्लीय क्षारीय जो अनुसार है वने सुधारक जैसे जिप्सम या चूना रो प्रयोग भी कर सकेगा सा।
0: अगर आप मिट्टी का नमूना ले रहे हैं तो कुछ सावधानी की भी जरूरत पड़ेगा। आप सावधानी कई तरह की देखो अपना मेड़ है पेड़ का नीचे या पचे गोबर का ढेर लगे दिखा है वन के आसपास अपने नमूनों नहीं लेना, ताकि कई के मिट्टी को जो आप नमूनों ली दो विका अपन सही अनुमान लाग सके। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो व्या करे वणी में जितनी भी अपना मात्रा बताई रखी है जो भी नियम कायदा बताई रखे है इनको भी अपने ध्यान रखना पड़ेगा।
1: तो देखो पेमा भाई ये तो भी कार्यक्रम में जानकारी, और अबे आपके वो तो चलता चलता कार्यक्रम में किसान भाई ने एक राजस्थानी लोकगीत और सुनावा सा।
0: हाँ सर सुनाए गीत।

0: तो देखो पेमा भाई कार्यक्रम में हो जानकारी कराई और अभी देखो घड़ी आड़ी देखा तो आपने चालवारो टेम वे गयो सा तो चाला सा
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा। किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे

0: दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में यह पहल महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चा अत्यंत सार्थक रही। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनो निर्व्याजमाय विश्वस्तु।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूल के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया गया है। महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी। एक ऐतिहासिक फैसले में पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित की गई है। ग्रुप बी के पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष की रहेगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 3:05 हो चुके हैं।

हमारी पहली सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। सांध्यकालीन सभा के प्रसारण लेकर शाम 5 बजे हम एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.9 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: कहीं पहाड़ों की वादियों में इतिहास सांस ले रहा है तो कहीं विज्ञान भविष्य की नई धुन बुन रहा है। कहीं एक योद्धा की तलवार आज भी साहस की कहानी सुनाती है तो कहीं संग्रहालयों की खामोशी सदियों की आवाज़ बन जाती है।
1: और आज एक ऐसी ही शाम में जहाँ भी ज्ञान भी होगा, रोमांच भी, इतिहास भी होगा और तकनीक भी, और बातों में होगी मुस्कान की मिठास भी।
0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के प्यारे श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने जोशीले, ज्ञान से भरे और दिल से जुड़े कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त प्रेरणा।
1: और मैं हूं आपका साथी मानस। और आज का सफर होने वाला है थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा इंस्पिरेशनल और पूरा एंटरटेनिंग,
0: क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी की जो समुद्र की गहराइयों में भी आवाज़ को पहचान लेती है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में होगा सोनार का फैसिनेटिंग संसार, जहाँ साउंड वेव्स बनेंगी खोज की ताकत।
0: फिर चलेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक घाटी की ओर जहाँ प्रकृति और संस्कृति एक साथ कहानी सुनाते हैं,
1: यानी खूबसूरत माद्रियू पेराफिटा क्लेरोर वैली, जो सिर्फ एक वैली नहीं है बल्कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की एक लिविंग लेगेसी है।
0: और दोस्तों, आज इतिहास के पन्नों से निकलेगी वीरता की वो गूंज जो सदियों बाद भी दिलों में जोश भर देती है,
1: क्योंकि बात होगी महान योद्धा महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी के ऐतिहासिक युद्ध की।
0: इसके साथ ही बात करेंगे वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे की, जहां विज्ञान और उम्मीद साथ चलते दिखाई देंगे,
1: और इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी, जहां हर पुरानी चीज सिर्फ वस्तु नहीं बल्कि इतिहास की धड़कन बन जाती है।
0: साथ ही मिलेंगे कुछ ऐसी महान हस्तियों से जिन्होंने अपने विचारों, कला और कर्मों से दुनिया को नई पहचान दी,
1: यानी जन्म और पुण्यतिथि विशेष में होगी प्रेरणादायक कहानियां, कुछ यादें, कुछ उपलब्धियां और ढेर सारी सीख।
0: इतिहास के पन्नों से लेकर खेल जगत की हलचल तक
1: और शेयर मार्केट की दुनिया से लेकर आज की खास जानकारियों तक, सब कुछ होगा आज की इस शानदार शाम में।
0: ज्ञान की बातें हो तो सफर खास बन जाता है, और जब साथ हो मुस्कान और जज्बे का तो हर पल युववाणी बन जाता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए।

0: कुछ जंगें तलवारों से नहीं, हौसले और उम्मीदों से जीती जाती है। कुछ बीमारियां सिर्फ शरीर को नहीं, समाज की सोच को भी चुनौती देती है। और जब विज्ञान उम्मीद बनकर आगे आता है तो इंसानियत फिर से मुस्कुराती है।
1: मानस, जरा सोचिए, अगर किसी ऐसी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन बन जाए जिसने दशकों से पूरी दुनिया को चुनौती दी है, तो वो दिन कितना बड़ा होगा।
0: और शायद इसी उम्मीद, इसी रिसर्च और इसी जागरूकता को समर्पित है आज का दिन, क्योंकि 18 मई को पूरी दुनिया मना रही है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, यानी कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस।
1: दोस्तों, ये दिन सिर्फ मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ दिन नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की उम्मीद का प्रतीक है जो HIV या एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं।
0: दोस्तों, इस दिन की शुरुआत हुई थी ईयर 1997 में, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक भाषण में कहा था, एड्स को खत्म करने के लिए एक प्रभावी वैक्सीन बनना बेहद जरूरी है।
1: और उसी सोच ने 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, इसका उद्देश्य था लोगों को HIV वैक्सीन रिसर्च के प्रति जागरूक करना और उन वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स का सम्मान करना जो इस मिशन में लगे हुए हैं।
0: अब सवाल ये आता है कि आखिर HIV वैक्सीन होती क्या है?
1: तो दोस्तों, जैसे दूसरी वैक्सीन हमारे शरीर को किसी बीमारी से लड़ने की ट्रेनिंग देती है, वैसे ही HIV वैक्सीन का उद्देश्य शरीर के इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बनाना है कि वो HIV वायरस को पहचान कर उससे लड़ सके।
0: लेकिन HIV वायरस बहुत तेजी से अपना रूप बदलता है, यानी म्यूटेट करता है, और यही वजह है कि इसकी वैक्सीन बनाना वैज्ञानिकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है।
1: फिर भी दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और आज कई एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स के दौर में हैं। और रिसर्चर्स को ये उम्मीद भी है कि आगे आने वाले समय में HIV के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन जरूर विकसित की जाएगी।
0: अब एक जरूरी बात, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है।
1: और अगर समय पर इलाज न मिले तो यही HIV आगे चलकर एड्स का रूप ले सकता है।
0: लेकिन दोस्तों, आज विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि अभी तक HIV की जो पूरी तरह से प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन लगातार रिसर्च और नई टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है।
1: दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें तो mRNA टेक्नोलॉजी, एंटीबॉडी रिसर्च और एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स जैसी तकनीकें आज उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ चुकी हैं।
0: और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, HIV किसी के साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले मिलने या साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है।
1: इसीलिए HIV से जुड़े लोगों के प्रति भेदभाव नहीं, बल्कि समझदारी, संवेदनशीलता और सहयोग दिखाना बेहद जरूरी है।
0: विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हमें ये सिखाता है कि बीमारी से लड़ाई सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि जागरूकता, रिसर्च और इंसानियत से जीती जाती है।
1: और शायद इसीलिए आज का दिन सिर्फ अवेयरनेस डे नहीं, बल्कि उम्मीद, विज्ञान और मानवता का उत्सव है। और दोस्तों, आज के दिन एक और दिवस मनाया जा रहा है, तो क्यों ना उस पर भी चर्चा की जाए।
0: बिल्कुल, कुछ इमारतें सिर्फ दीवारों से नहीं बनती, उनमें सदियों की कहानियां बसती है। कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो हमारे अतीत से मिलवाती है।
1: बिल्कुल मानस, क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक पुरानी तस्वीर, कोई प्राचीन मूर्ति या इतिहास से जुड़ी छोटी सी चीज भी हमें अचानक किसी और दौर में ले जाती है।
0: बिल्कुल, और शायद इसी के लिए म्यूजियम्स यानी कि संग्रहालय की सिर्फ वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को जीवित याद में दिलाते हैं।
1: और इन्हीं यादों, विरासतों और कहानियों को समर्पित है आज का दिन, क्योंकि 18 मई को पूरी दुनिया मना रही है इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस।
0: दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत ईयर 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी कि ICOM द्वारा की गई थी।
1: इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को म्यूजियम्स के महत्व के बारे में जागरूक करना और ये बताना कि संग्रहालय सिर्फ इतिहास नहीं संभालते, बल्कि समाज को शिक्षित, प्रेरित और जोड़ने का काम भी करते हैं।
0: हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे की एक खास थीम भी रखी जाती है, जो म्यूजियम्स की बदलती भूमिका और समाज में उनके योगदान को दर्शाती है।
1: आज के मॉडर्न म्यूजियम्स सिर्फ पुरानी चीज़ें दिखाने तक सीमित नहीं हैं, अब वहाँ डिजिटल एक्सपीरियंसेस, वर्चुअल ट्यूर्स, इंटरैक्टिव गैलरीज और नई टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो युवा पीढ़ी है उनको इतिहास को वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें।
0: दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश और जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है।
1: चाहे दिल्ली का नेशनल म्यूजियम हो, उदयपुर का सिटी पैलेस म्यूजियम या फिर कोलकाता का इंडियन म्यूजियम, हर संग्रहालय अपने भीतर इतिहास का एक अलग ही संसार समेटे हुए हैं।
0: और दोस्तों, म्यूजियम हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाते, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि हमारी संस्कृति, कला और विरासत को संभाल कर रखना कितना जरूरी है, क्योंकि

0: जो समाज अपने इतिहास को याद रखता है वही अपने भविष्य को और मजबूत बना सकता है।
1: तो इस इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर कभी समय निकालिए, किसी म्यूजियम जाइए और इतिहास को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि करीब से महसूस कीजिए,
0: क्योंकि संग्रहालय सिर्फ चीजों को नहीं संभालते, वो पीढ़ियों की पहचान और यादों को जीवित रखते हैं।

0: आज की इस मॉडर्न इरा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है, और बात जब देश के डेवलपमेंट की हो तो युवाओं की भूमिका बहुत खास मानी जाती है।
1: बिल्कुल, नई सोच, नई ऊर्जा।

0: नया जोश, क्रिएटिवनेस और टेक्निकल नॉलेज, इन्हीं सब कारणों से युवा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सोनार टेक्नोलॉजी की।
1: सोनार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने साउंड वेव्स का उपयोग करके पानी के अंदर की जो गहराई है, दिशा है और वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
0: दोस्तों, अब जब हम सोनार की बात कर रहे हैं तो इसके टाइप्स की भी बात करते हैं। तो ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है निष्क्रिय सोनार, यानी कि पैसिव सोनार। इसमें खुद से साउंड नहीं भेजी जाती है, बल्कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जो साउंड क्रिएट होती है उसे सुना जाता है। इसका यूज़ मेनली दुश्मन जहाज की आवाज़ सुनने के लिए करते हैं और ओशियन लाइफ के अध्ययन में किया जाता है।
1: और वहीं दूसरी ओर होता है सक्रिय सोनार, यानी कि एक्टिव सोनार। इसमें साउंड वेव्स भेजी जाती है और उनकी जो प्रतिध्वनि यानी कि इको है उसे प्राप्त किया जाता है। इसका यूज़ सबमरीन्स को खोजने में किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि दुश्मनों को इससे संकेत भी मिल सकता है।
0: दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की भी बात करते हैं कि सोनार के बारे में। दोस्तों, इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है कि यह 20वीं शताब्दी में हमारे सामने आई थी और इस टेक्नोलॉजी का जो पहला रिकॉर्डेड उपयोग किया गया था वो 1490 में लियोनार्डो दा विंची द्वारा किया गया था, जिन्होंने पानी में डाली गई एक ट्यूब का यूज़ करके कानों से दूसरे जहाज का पता लगाया था।
1: इसके बाद में जब वर्ल्ड वॉर वन के दौरान सबमरीन का पता लगाना ज़रूरी हो गया था, तब वैज्ञानिकों ने पानी में साउंड वेव्स के यूज़ पर रिसर्च की और वर्ल्ड वॉर टू तक सोनार का व्यापक उपयोग शुरू हो गया। आज यह डिफेंस, साइंस और बिजनेस में इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी बन चुकी है।
0: बिल्कुल, जिसका यूज़ नेवी द्वारा दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने में किया जाता है, साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो इसे मछली के झुंड का पता लगाने में भी काम में लेते हैं और समुद्री अनुसंधान में तल का नक्शा बनाने और गहराई को मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
1: साथ ही साथ जहाज़ों की जो सुरक्षा होती है उसमें भी ये काम करता है। जब कोई चट्टान या फिर कोई बाधा आ रही हो तो पहले से हमें संकेत मिल जाता है और वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में समुद्री जीवों और पर्यावरण की स्टडी का जो काम है वो करने में भी इसे यूज़ में लेते हैं।

0: इतिहास केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह हमारी धरोहरों, किलों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों में आज भी जीवित दिखाई देता है। हर हेरिटेज साइट अपने भीतर कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशन और बीते युग की अनगिनत कहानियां समेटे हुए होती है।
1: और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसी ही ऐतिहासिक स्थल की ओर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और मानव तथा प्रकृति के बीच सदियों से चले आ रहे सामंजस्य के लिए बेहद खास है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सेगमेंट को, जहां पर हम आपको लेकर चलने वाले हैं
0: मेड्रियो पेराफीता क्लारोर वैली की ओर, जो दुनिया की एक फेमस नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज साइट है। ये छोटा सा लेकिन बेहद सुंदर सा वैली एरिया है, जो कि यूरोप के देश एंडोरा में स्थित है।
1: दोस्तों, इसे वर्ष 2004 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, यानी कि विश्व धरोहर स्थल। बाद में वर्ष 2006 और 2008 में इसकी जो बाउंड्री है और जो सिक्योरिटी का जो एरिया है, उसका भी विस्तार किया गया था।
0: इस प्लेस के ज्योग्राफिकल विशेषताओं की बात करें तो फिर यह वैली एंडोरा के साउथ ईस्ट पार्ट में स्थित है और लगभग 42 किलोमीटर स्क्वायर तक का जो एरिया में फैली हुई है,
1: जो कि एंडोरा के टोटल एरिया का अप्रोक्सीमेट 9% हिस्सा कवर करती है, जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत, घास के मैदान, जंगल, झीलें और साथ में पथरीले रास्ते भी यहां देखने को मिलते हैं।
0: इस घाटी की ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से लेकर 2900 मीटर तक पहुंचती है। यहां का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी क्लीन और प्योर है, इसलिए ट्रेकिंग और नेचर लवर्स के लिए यह एक बेस्ट लोकेशन है।
1: और दोस्तों, अब बात करें इसके नाम की, तो मेड्रियो पेराफीटा और क्लारोर, यह इस घाटी के 3 मेन पार्ट हैं और नदी प्रणालियों के नाम हैं, और तीनों को मिलाकर ही इस स्थान का नाम रखा गया है।
0: यह वैली लगभग 700 सालों से ह्यूमन एक्टिविटीज़ का पार्ट रही है। यहाँ लोग पहले खेती करते थे, पशुपालन करते थे, साथ ही साथ लोहे का जो उत्पादन का कार्य है वो भी करते थे।
1: बिल्कुल, पुराने समय के पत्थर से बने घर यहाँ देखने को मिलते हैं, चरवाहों की झोपड़ियाँ भी यहाँ रही है, पुराने कच्चे रास्ते भी यहाँ हैं, उस दौर का कृषि क्षेत्र भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा और लोहे को पिघालने के अवशेष भी यहाँ आज भी स्थित हैं। यह सभी ह्यूमन और नेचर के बीच का जो बैलेंस्ड रिलेशन है उसे हमें बताते हैं।
0: यही वजह है कि यूनेस्को द्वारा इस घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। पारंपरिक पर्वतीय जीवन शैली को जो संरक्षित किया गया है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का एक अनोखा मिश्रण हमें देखने को मिलता है। ये यूरोप का पर्वतीय सभ्यता को दर्शाने वाला क्षेत्र है।
1: दोस्तों, यह घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ आपको हरे भरे घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे, यहाँ वह झीलें आपको देखने को मिलेगी जो ग्लेशियर से बनी हुई है, वनस्पतियाँ भी यहाँ की काफ़ी दुर्लभ मानी गई है, और यहाँ जो नदियाँ बहती है वह भी काफ़ी साफ है।
0: और यह पहाड़ी का इलाका है, इसलिए यहाँ पर आपको पहाड़ी वाले जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि पिरेनियन चेमुआ, मारमोट, जंगली हिरण, रेड फॉक्स और गोल्डन ईगल।
1: और दोस्तों, साथ ही साथ आप ट्रैकिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ये उसके लिए भी बहुत फेमस है। हाइकिंग, नेचर फोटोग्राफी, बर्ड वॉचिंग, इन सभी का आप मज़ा यहाँ ले सकते हैं।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता

0: है?
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कुछ लोग किताबें लिखते हैं और कुछ लोग सोचने का तरीका बदल देते हैं। कुछ सिर्फ नाम लिखते हैं और इतिहास में दर्ज नहीं होते, बल्कि विचारों में भी हमेशा जिंदा रह जाते हैं।
3: मानस, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचा है जो फिलोसोफर भी हो, मैथमेटिशियन भी, राइटर भी और पूरी दुनिया को तर्क और शांति का संदेश देने वाला थिंकर भी?
2: और वो भी एक ऐसा इंसान जिसके विचार आज भी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स और फिलोसोफी की किताबों में पढ़ाए जाते हैं।
3: तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महान दार्शनिक, गणितज्ञ, लेखक और सामाजिक विचारक बर्ट्रेंड रसेल की। आज उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है।
2: जी दोस्तों, बर्ट्रेंड रसेल का जन्म 18 मई को 1852 में 72 में वेल्स, ब्रिटेन में हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका जो झुकाव पढ़ाई की ओर, ज्ञान की ओर बना रहा।
3: उन्होंने अपनी शिक्षा दुनिया की प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से प्राप्त की, जहाँ उन्होंने मैथमेटिक्स और फिलोसॉफी की पढ़ाई की।
2: और दोस्तों, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के कारण रसेल बहुत जल्दी एकेडमिक वर्ल्ड में भी उन्होंने अपना बड़ा नाम बना लिया। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और लेक्चरर के रूप में भी कार्य किया।
3: दोस्तों, रसेल को मॉडर्न लॉजिक और एनालिटिक फिलोसॉफी का पायनियर माना जाता है। उन्होंने लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, एजुकेशन, एथिक्स, पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज जैसे विषयों पर गहराई से काम किया।
2: उनकी कई प्रसिद्ध किताबें भी रही है, जैसे उनमें हमें देखने को मिलेगी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसॉफी, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी और वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन जैसी कई रचनाएं उसमें शामिल है।
3: दोस्तों, रसेल की फिलोसॉफी का सबसे बड़ा आधार था लॉजिक, रैशनल थिंकिंग और फ्रीडम ऑफ थॉट्स।
2: वो मानते थे कि इंसान को किसी भी बात के बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सवाल पूछने चाहिए, तर्क करना चाहिए और सच को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
3: बिल्कुल, उनकी एक बेहद प्रसिद्ध लाइन है, डू नॉट फियर टू बी एसेंट्रिक इन ओपिनियन, फॉर एवरी ओपिनियन नाउ एक्सेप्टेड वॉज वंस एसेंट्रिक।
2: रसेल सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि पीस एक्टिविटीज भी थे। उन्होंने युद्ध, न्यूक्लियर वॉर और हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई।
3: दोस्तों, इसी वजह से उन्हें कई बार विरोध और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने विचारों और मानवता के सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।
2: अब बात उनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की करें तो साल 1950 में रसेल को नोबेल प्राइज़ मिला था, लिटरेचर से सम्मानित किया गया था।
3: उन्हें यह सम्मान उनके उन लेखन कार्यों के लिए मिला जिसमें उन्होंने मानवता, विचारों की स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया।
2: इसके अलावा रसेल को पूरी दुनिया में फिलोसॉफी और सोशल थॉट के क्षेत्र में ग्लोबल इंटेलेक्चुअल आइकन माना जाता है।
3: दोस्तों, रसेल की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का माध्यम भी बनना चाहिए।
2: और शायद इसीलिए रसेल को सिर्फ एक नाम के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि सोचने की आज़ादी, तर्क और मानवता का प्रतीक भी माना जाता है।
3: जो सवालों से डरता नहीं, वही नई राह बनाता है। ज्ञान जब विनम्रता से जुड़ जाए, तभी इंसान सच में महान कहलाता है।
2: बिल्कुल दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, समाज जब बदलता है, जब कोई सवाल उठाने की हिम्मत करता है, जब कोई अकेला इंसान भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ बन जाता है।
3: बिल्कुल मानस, आज हम जिस समाज में लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक सुधार की बात करते हैं, उसके पीछे कई ऐसे लोगों का योगदान है जिन्होंने उस दौर में आवाज़ उठाई जब बोलना भी आसान नहीं था।
2: और उन्हीं महान समाज सुधारकों में से एक नाम आता है बेरहमजी मलाबारी, एक ऐसा पत्रकार, लेखक, कवि और रिफॉर्मर जिन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
3: दोस्तों, बहरामजी मालाबारी का जन्म 18 मई 1853 को गुजरात के एक पारसी परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा और लेखन को अपनी ताकत बनाया।
2: उन्होंने अपनी शुरुआती जो शिक्षा थी वो सूरत में प्राप्त की। कम उम्र में ही उन्होंने जो लिटरेचर, पोएट्री और सोशल इशूज थे उसमें गहराई प्राप्त कर ली थी।
3: दोस्तों, बहरामजी मालाबारी सिर्फ राइटर नहीं थे, बल्कि एक फियरलेस सोशल रिफॉर्मर भी थे।
2: उस समय भारतीय समाज में चाइल्ड मैरिज और वुमेन एक्सप्लोटेशन था, जिसमें ऐसी कई गंभीर समस्याएं थी, और मालाबारी ने इन मुद्दों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई।
3: उन्होंने खास तौर पर बाल विवाह और विधवा महिलाओं की जो खराब स्थिति थी उसके खिलाफ कई सारे कैंपेन्स चलाए।
2: उनकी सबसे चर्चित पुस्तक नोट्स ऑन इन्फेंट मैरिज एंड एनफोर्स्ड विडोहुड ने पूरे देश में सामाजिक सुधार की बहस को नई दिशा दी।
3: इस पुस्तक में उन्होंने कम उम्र में विवाह और महिलाओं पर होने वाले सामाजिक अत्याचारों को बेहद प्रभावशाली तरीके से सामने रखा।
2: दोस्तों, बेरहमजी मलाबारी ने कई महत्वपूर्ण किताबें और भी लिखी है। उनके जो प्रसिद्ध रचनाओं में से हमें द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश ग्रेब, गुजरात एंड गुजरातीज एंड इंडियन आई ऑन इंग्लिश लाइफ जैसी कई किताबें शामिल है।
3: इन रचनाओं में उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, महिलाओं की स्थिति और ब्रिटिश शासन के समय के सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे।

0: जर्नलिज्म के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वह बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने इंडियन स्पेक्टर नामक पत्रिका में जो संपादन किया है, जो उस समय का सामाजिक जागरूकता और सुधारवादी विचारों का एक बड़ा मंच बन गई थी।
1: उनके आर्टिकल्स इतने प्रभावी थे कि समाज के साथ साथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन तक भी में भी उनकी चर्चा होने लगी थी।
0: दोस्तों, मलाबारी सिर्फ लिखते ही नहीं थे बल्कि समाज सेवा में भी सक्रिय रूप से जुड़े रहते थे।
1: उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधवाओं के पुनर्वास और सामाजिक जागरूकता के लिए कई इनिशिएटिव्स भी शुरू किए। वो चाहते थे कि महिलाओं को समाज में सम्मान और बराबरी मिले।
0: उन्होंने बॉम्बे में महिलाओं और जरूरतमंदों की सहायता के लिए सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दिया। उनका जो पूरा जीवन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित रहा है।
1: दोस्तों, बहराम जी मालावारी की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि लेखन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि समाज बदलने की ताकत भी बन सकता है।
0: और शायद इसीलिए बहराम जी मालावारी सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं है बल्कि सामाजिक जागरूकता, नारी सम्मान और मानवता की मिसाल भी है।
1: जो दूसरों के दर्द को अपना बना ले वही समाज में रोशनी फैलाता है। एक सच्चा सुधारक वही होता है जो बदलाव की शुरुआत खुद से कर जाता है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कुछ खिलाड़ी मैच जीतते हैं और कुछ इतिहास बन जाते हैं, कुछ नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं तो कुछ खेल की ही पहचान बन जाते हैं।
4: बिल्कुल, टेनिस की दुनिया में विंबलडन जीतना किसी सपने से कम नहीं माना जाता।
3: और अगर कोई खिलाड़ी लगातार कई बार विंबलडन जीत जाए तो वो सिर्फ चैंपियन नहीं रहता बल्कि लीजेंड बन जाता है।
4: तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महान ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी फ्रेडरिक जॉन पेरी यानी फ्रेड पेरी की, जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है।
3: फ्रेड पेरी का जन्म 18 मई को 1909 में इंग्लैंड में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शुरुआत में टेबल टेनिस का खेला था और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने नेशनल लेवल चैंपियन भी बन गए थे,
4: लेकिन बाद में उन्होंने टेनिस की ओर रुख किया और आगे चलकर दुनिया की सबसे महानतम टेनिस प्लेयर्स में शामिल हो गए।
3: दोस्तों, फ्रेड पेरी ने 1930 के दौर में टेनिस की दुनिया पर अपना राज किया था। उनकी जो स्पीड, कॉन्फिडेंस और अटैकिंग स्टाइल थी उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती थी।
4: दोस्तों, उन्होंने अपने करियर में 8 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स जीते, जिनमें विंबलडन, US चैंपियनशिप, फ्रेंच चैंपियनशिप और ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप शामिल है।
3: और दोस्तों, फ्रेड पेरी लगातार 1934, 1935 और 1936 में विंबलडन चैंपियन बने। काफ़ी लंबे समय तक वे आखिरी ब्रिटिश पुरुष खिलाड़ी रहे जिन्होंने विंबलडन सिंगल्स टाइटल जीता था।
4: उनकी यह उपलब्धि ब्रिटिश स्पोर्ट्स हिस्ट्री में आज भी बेहद खास मानी जाती है।
3: फ्रेड पेरी सिर्फ टेनिस प्लेयर ही नहीं है बल्कि स्पोर्ट्स आइकन भी बन गए थे।
4: दोस्तों, उन्होंने बाद में अपना फेमस स्पोर्ट्स वियर ब्रांड फ्रेड पेरी भी शुरू किया, जिसका लॉरेल वर्थ लोगो आज भी दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय है।
3: दोस्तों, फ्रेड पेरी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उनका डिटर्मिनेशन। साधारण बैकग्राउंड से आने वाले के बावजूद भी उन्होंने अपना जो मेहनत और टैलेंट है वो दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए काम में लिया,
4: और यही वजह है कि उन्हें टेनिस हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल खिलाड़ियों में माना जाता है।
3: आज फ्रेड पेरी की जो जयंती है उस पर हमें यह सीख मिलती है कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि लगातार मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है।
4: और शायद इसीलिए फ्रेड पेरी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन और स्पोर्टिंग एक्सीलेंस की मिसाल हैं।
3: मैदान में वही चमकते हैं जो हार से सीखता है। खेल से सिर्फ नाम जीतते हैं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का सफर भी है। अब आगे दोस्तों बात करेंगे रीमा लागू की। कुछ चेहरे फिल्मों में दिखाई देते हैं और कुछ दिलों में बस जाते हैं, कुछ कलाकार किरदार निभाते हैं और कुछ रिश्तों को जीवन बना देते हैं।
4: मानस, जब भी हिंदी सिनेमा में माँ शब्द सुनाई देता है तो कुछ चेहरे अपने आप याद आ जाते हैं,
3: और उनमें जो प्यार, सादगी भरे अपने पन देने वाले चेहरों में से ही एक नाम आता है हमारे सामने, रीमा लागू। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने पर्दे पर माँ के किरदार का एक नई पहचान दी थी।
4: दोस्तों, रीमा लागू का जन्म 21 जून 1958 को मुंबई में हुआ था। उनकी माता मंदाकिनी जी मराठी थिएटर की प्रसिद्ध कलाकार थी और शायद यहीं से अभिनय का हुनर भी रीमा जी को विरासत में मिला।
3: उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मराठी थिएटर टेलीविजन से की थी, लेकिन आगे चलकर हिंदी फिल्मों में अपनी अलग सी पहचान बनाई।
4: दोस्तों, 90s के दौर में अगर किसी अभिनेत्री ने स्क्रीन मदर की इमेज को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया तो वो थी रीमा लागू।
3: उन्होंने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, साजन, कल हो न हो, वास्तव और हम साथ साथ हैं जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई है।
4: उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका नेचुरल एक्टिंग स्टाइल। जब वो स्क्रीन पर माँ का किरदार निभाती थी तो उसमें बनावट नहीं बल्कि सच्चा अपनापन दिखाई देता था।
3: इसी वजह से दर्शकों ने उन्हें सिर्फ अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि हर घर की माँ के रूप में जैसा प्यार दिया।
4: रीमा लागू ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन में भी शानदार काम किया। तूतू मैमे जैसे लोकप्रिय सीरियल में उनका कॉमिक टाइमिंग और अभिनय आज भी लोगों में याद किया जाता है।
3: उन्होंने मराठी सिनेमा और थिएटर में भी लंबे समय तक अपना योगदान दिया और हर माध्यम से अपनी सादगी और प्रतिभा से लोगों को दिल जीता है।
4: दोस्तों, 18 मई 2017 को कार्डिक अरेस्ट की वजह से रीमा लागू का निधन हो गया, लेकिन उनके निभाए किरदार आज भी दर्शकों की यादों में जीवित हैं।
3: क्योंकि कुछ कलाकार सिर्फ अभिनय नहीं करते हैं बल्कि भावनाओं को जीतते हैं, और रीमा लागू उन्हीं कलाकारों में से एक थी।
4: चेहरे बदल जाते हैं लेकिन कुछ एहसास हमेशा रहते हैं। पर्दे की दुनिया में कुछ रिश्ते अभिनय नहीं लगते, वो सच में दिल का हिस्सा बन जाते हैं।

0: चढ़कर चैतक करता रण राणा वो मेवाड़ी था, काट दिए मस्तक कितने लगता स्वयं कपाली था। हुंकार किया रण में भीषण संहार किया, दसों दिशाएं गूंज उठी महाराणा का जय जयकार किया।
1: इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के उस अद्भुत युद्ध की जिसने वीरता स्वाभिमान और मातृभूमि की प्रति जो प्रेम की मिसाल कायम की है।
0: बैटल ऑफ हल्दीघाटी यह केवल एक युद्ध

0: नहीं था बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ी गई एक अमर गाथा थी। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक युद्ध की पूरी कहानी।
1: यह युद्ध मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के सेना के बीच में लड़ा गया था, जो कि राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित हल्दीघाटी नामक दर्रे में हुआ था।
0: इसीलिए इसे हल्दीघाटी का युद्ध कहा जाता है। यह 18 जून को सन 1576 में हुआ था। मुख्य पक्ष की बात करें तो मेवाड़ की सेना की ओर से नेतृत्व किया महाराणा प्रताप ने,
1: जिनका सहयोग किया हकीम खान सूर, भामा शाह, ज्वाला सिंह, मान सिंह जैसे कई वीरों ने। तो वहीं मुगल सेना की ओर से अकबर के लिए नेतृत्व किया मान सिंह ने।
0: अकबर चाहता था कि सभी राजपूत राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाएं। कई राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी,
1: लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। यही हल्दीघाटी के युद्ध का मुख्य कारण रहा था।
0: 16वीं शताब्दी में अकबर पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था और उसने महाराणा प्रताप को भी कई बार समझौते के प्रस्ताव भेजे,
1: लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता और मातृभूमि को अहमियत देते हुए सारे ही समझौते ठुकरा दिए और अंत में युद्ध का निर्णय हुआ।
0: युद्ध इतना भीषण था कि पूरा मैदान रक्त की झील सा बन गया हो, मिट्टी तक वहां की हल्दी के रंग जैसी हो गई।
1: महाराणा प्रताप के जो प्रिय घोड़े चेतक ने भी पूरे युद्ध में बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के हाथी पर छलांग लगा दी, लेकिन सून में लगी तलवार से वह गंभीर घायल हो गया।
0: लेकिन इसके बाद भी उसने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी और अंतिम समय में महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बड़े नाले के ऊपर से छलांग लगा दी। हूँ लड़ियो गणों हूँ सहयोग गणों, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में बेरिया रोखून बहावण ने।
1: इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे भारत के वीर योद्धा महाराणा प्रताप की। हल्दीघाटी के इस युद्ध के से ही हमें उनके जो जीवन है, उनकी देशभक्ति है, संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रतीक जो उनकी भावना है, उसका पता चलता है।
0: दोस्तों, इनके जन्म की बात करें तो 9 मई को 1540 में कुंभलगढ़ के किले में इनका जन्म हुआ। इनके पिता उदय सिंह थे और माता का नाम जेवंता बाई।
1: बचपन से ही ये बहादुर, स्वाभिमानी और युद्ध के कला में निपुण थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध रणनीति का भी इन्होंने विशेष प्रशिक्षण लिया था।
0: वर्ष 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। उस समय तक कई राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, पर महाराणा प्रताप ने समझौता नहीं किया।
1: अपनी मृत्यु से पहले राणा उदय सिंह ने अपने जो छोटी पत्नी के बेटे जगमाल को राजा घोषित कर दिया था, लेकिन सभी सरदार राजा इस फैसले से सहमत नहीं हुए और सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि जगमाल को सिंहासन त्यागना होगा।
0: महाराणा प्रताप ने सभी सरदारों की इच्छा का आदर करते हुए मेवाड़ की जनता का नेतृत्व करने का दायित्व संभाला और अधीनता स्वीकार करने के बजाय मेवाड़ के जंगलों में अरावली की गुफाओं में रहकर बेहद कठिन जीवन व्यतीत किया,
1: जहां उन्होंने घास की रोटियां तक खाकर अपना पेट भरा। उन्होंने राजसमंद से लेकर माउंट आबू तक के जंगलों को और अरावली की पहाड़ियों में भी अज्ञातवास निकाला।
0: इस कठिन समय में भी उन्हें भील जनजाति का सहयोग मिला, जिन्हें प्यार से वे पूंजा कहा जाता था।
1: साथ ही भामा शाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप के नाम कर दी थी, जिसने सेना को वापस संगठित करने में भी काफी मदद मिली।
0: महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अंतिम समय मेवाड़ की तत्कालीन राजधानी चावण में बिताया। यहाँ लगभग उन्होंने 12 से 13 वर्ष बिताए
1: और जनवरी 1597 में शिकार के दौरान गहरी चोट लगने से 19 जनवरी 1579 में को उनका निधन हो गया था।

0: दोस्तों हम आगे बात करते हैं आज के इतिहास की, और सबसे पहले बात करते हैं ईयर 1974 की, जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और इस ऑपरेशन का नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। और इसी उपलब्धि में भारत की जो दुनिया की प्रमुख न्यूक्लियर पावर्स में शामिल हो गया था।
1: बिल्कुल दोस्तों, 18 मई 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने पीएसएलवी C9 मिशन के जरिए एक साथ 10 सैटेलाइट्स लॉन्च करके इतिहास रच दिया था।
0: यह उस समय भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई थी।
1: और दोस्तों अब बात करते हैं विश्व की, तो 18 मई 1897 को प्रसिद्ध उपन्यास ड्रेकुला पहली बार प्रकाशित हुआ था, जिसने हॉरर लिटरेचर की दुनिया में एक नई पहचान बनाई, और आज भी ड्रेकुला का नाम दुनिया की सबसे फेमस फिक्शनल कैरेक्टर्स में गिना जाता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स अपडेट की।
0: तो दोस्तों बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से कल हराया था और लगातार तीसरी जीत पर अपना नाम किया। टॉप टू की दावेदारी के लिए वे भी काफी मजबूत प्रदर्शन किया है।
1: और साथ ही साथ कल एक और मैच हुआ था जहां दिल्ली ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया और 44 दिन बाद अपने ही घर पर जीती थी दिल्ली। और अब आज के मैचेस की बात करते हैं कि आईपीएल में आज के मैच में किस किस का मैच है।
0: आज होने वाला है चेन्नई और हैदराबाद का मैच, जो कि शाम 7:30 बजे से होने वाला है, जिसमें हमें थाला दर्शनम यानी कि थाला को भी देखने को मिलेगा।
1: बिल्कुल, तो आप ज़रूर देखिएगा। और अब हम आपको लिए चलते हैं शेयर बाज़ार की ओर। दोस्तों अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसका बाज़ार आज 75,315.04 अंकों पर बंद हुआ, और इसमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिली, और वो है 77.05 अंकों की उछाल इसके में देखने को मिली। और NSE में जो उछाल देखने को मिली वो बहुत ही कम अंकों की है, फिर भी अच्छी बात है कि उसमें उछाल आई है। 6.45 अंकों की उछाल के साथ यह बंद हुआ 23,649.95 पर। और एक डॉलर की बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य रहा 96.30 रुपया। और साथ ही साथ अब वक्त है आपसे विदा लेने का, तो मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रेरणा,
0: और मैं मानस।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: युवा साथियों के लिए अभी युवाणी कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से अब समाचार लिए किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरीटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत ईएफटीए व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान

0: दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना फिल्म फूल और कांटे से, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार समीर और संगीत नदीम श्रवण का।

अनुराधा पौडवाल और अभिजीत की आवाजों में ये गाना फिल्म सड़क से। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे की अवसमय गाना फिल्म तुम मेरे हो से, संगीत आनंद मिलिंद का था। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज से फिल्म जंगल लव, धुन आनंद मिलिंद की।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। हमारे जयपुर केंद्र से अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस साल देश का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी, आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की। और विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे हमेशा से बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति प्रयासों के समर्थक रहे हैं। श्री मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गाहर स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दोनों देशों की ओर से जारी एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि यूक्रेन और पश्चिमी एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के बीच सैन्य कार्रवाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता।

0: यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को समाप्त करने की साझा प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल देश का कुल निर्यात लगभग 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने सामूहिक रूप से $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि देश का व्यापारिक समुदाय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: कोटा के जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि इस मामले में शुरुआती तौर पर उपकरणों में संक्रमण या दवाइयों में गड़बड़ी की आशंका है। श्री खींवसर ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 23 मई तक आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि एम्स की टीम ने भी अस्पताल का दौरा कर जानकारी ली है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस अस्पताल पर आमजन का भरोसा है और प्राथमिक जांच के आधार पर शुरुआती कदम उठाए गए हैं।
3: जो मेरा जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनकी 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल तो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है आईवी फ्लूइड जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ ठीक है, स्टोरेज उसकी सही नहीं हो, दैट कुड बी वन रीजन इसका।
1: राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने इस नए लोगो का लॉन्च किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह लोगो राजस्थान के जनमानस की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि इस प्रतीक चिन्ह में राज्य पुष्प रोहिड़ा, खेजड़ी वृक्ष और विधान भवन की छवियों को शामिल किया गया है, जो प्रदेश की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाता है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि आज विधानसभा के चारों ऐतिहासिक द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का भी अनावरण किया गया। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप नए नाम दिए गए हैं।
4: चौरे द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार, ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार, जहाँ पे विधायिका की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है, और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार, ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें, और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है, और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य द्वार। इस प्रकार 5 द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 स्थानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सीबीआई की जांच में परीक्षा से पहले लीक हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के मुख्य स्रोत का भी पता चल गया है। एजेंसी ने इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर से आरसीसी कोचिंग संस्थान के संचालक प्रोफेसर शिवराज मोंटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक जयपुर, दिल्ली और लातूर सहित देश के विभिन्न

0: हिस्सों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि इस महीने की 3 तारीख को हुई ये परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए आम लोगों की समस्याओं को सुना और अनेक मामलों पर मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसुनवाई में आए सभी मामलों के निस्तारण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 19 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। चित्तौड़गढ़ और पिलानी 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहे। तेज गर्मी के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरह गर्म बना रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं हीटवेव की आशंका है।
1: अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 4-5 दिन तेज हवाएं प्रभावी होंगी। तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। वहीं ज्यादातर शेष जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा।
0: आयुष मंत्रालय ने भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए आज एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले मजदूरों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। एडवाइजरी में तापघात, चक्कर आने, तेज सिरदर्द और बेहोशी जैसे लक्षणों को मेडिकल इमरजेंसी माना गया है। ऐसी स्थिति होने पर तुरंत 108 या 102 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। लू से बचाव के लिए मंत्रालय ने पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने को कहा है। इसके साथ ही शरीर को ठंडा रखने के लिए छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, तरबूज और खीरे जैसे पारंपरिक चीजों के सेवन की सिफारिश की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1.5 महीने की नहरबंदी के बाद आज 10,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सिंचाई विभाग के अनुसार 1 अप्रैल को नहरबंदी लागू की गई थी। इस दौरान नहर की सिल्ट सफाई, टूटी पटड़ियों की मरम्मत, रेगुलेटरों के रखरखाव और अन्य तकनीकी काम किए गए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगले 48 घंटों में यह पानी टेल क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। इससे सूरतगढ़, रावला, घड़साना और अनूपगढ़ क्षेत्र के हजारों किसानों को खरीफ की फसलों की बुआई के लिए पानी मिल सकेगा। ऐसे में अब किसान नरमा, ग्वार और अन्य फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में नहरबंदी का अंतिम चरण चल रहा है। एक सप्ताह तक नहरबंदी के प्रभाव से पेयजल आवक में कमी को देखते हुए स्थानीय भूजल स्रोतों से पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था की जा रही है। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर के राजकीय संग्रहालयों, स्मारकों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर और अजमेर सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर देशी विदेशी पर्यटकों और आम जन के लिए सभी संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालयों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और

पर्यटन के लिए लगातार काम कर रही है। जैसलमेर के दिथार हेरिटेज म्यूजियम और पाली के राजकीय बांगड़ म्यूजियम में भी आज सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण विषय पर विचार संगोष्ठियां रखी गई। इन संगोष्ठियों का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में इतिहास और संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने

चार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस साल देश का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी, आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की और विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी जिले की चिट्ठी में हम आप तक पहुंचाएंगे प्रशासनिक, सामाजिक गतिविधियों और स्थानीय आयोजनों से जुड़ी खबरें। चिट्ठी में बात करेंगे ग्राम रथ अभियान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, लू और तापघात से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों और जनगणना 2027 की। साथ ही होंगे और भी कई समाचार। चिट्ठी में सबसे पहले बात पीएम सूर्यघर योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भर बनते बूंदी की। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जिले में जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। 15 फरवरी 2024 से शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाते हैं और उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। जिले में अब तक 1,134 घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इससे रोजाना 23,667 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़ा कदम है। साथ ही 1,000 से अधिक उपभोक्ताओं को अब तक 8 करोड़ 5 लाख से अधिक की सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दी जा चुकी है। ये योजना बिजली उत्पादन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। चिट्ठी में अब बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान की। जिले भर में आयुर्वेद विभाग और प्रशासन की ओर से योग जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आयुर्वेद विभाग के पीएमओ और पंच कर्म विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुशवाहा के निर्देशन में बूंदी और सथूर में हाल ही में योग कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में योग सत्र रखे गए। इनमें विद्यार्थियों को विभिन्न योगाभ्यास करवाए गए। योग गुरु दीपक गुर्जर ने बताया कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवन शैली को सकारात्मक दिशा देने वाली भारतीय पद्धति है। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बीते दिनों ग्राम रथ अभियान की धूम रही। अभियान के तहत एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों ने रोचक अंदाज में प्रस्तुतियां देकर लोगों को योजनाओं के फायदों और आवेदन प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। इस पहल से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है। एलईडी वैन के माध्यम से 13 विभागों की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया। साथ ही संध्या चौपाल का भी आयोजन हुआ। जनगणना 2027 की प्रक्रिया के तहत 1 मई से स्वगणना की शुरुआत हुई। इस मौके पर स्वगणना प्रपत्र भरने के बाद जिला कलेक्टर ने लोगों से इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। अब 16 मई से प्रगणक घर घर जाकर आंकड़े जुटा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर बूंदी में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। श्रम विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया। इसमें शहर के विभिन्न चौखटियों पर जाकर श्रमिकों से बातचीत की गई और उन्हें श्रमिक अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अंकिता महर्षि ने श्रमिकों को पंजीयन प्रक्रिया के बारे में बताया। साथ ही ई श्रम पंजीयन और प्रधानमंत्री मानधन योजना के फायदों से भी अवगत कराया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रमिकों को श्रम कानूनों की जानकारी दी गई। साथ ही अधिकारों के हनन होने पर कानूनी मदद लेने के तरीकों के बारे में भी बताया गया। जिले के हर कोने में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में समृद्ध प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और सर्वेक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए डॉक्टर अनिता यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर यादव ने जिले के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और पुस्तकालय संचालकों से अपील की है कि वे पुराने हस्तलिखित ग्रंथों की जानकारी प्रशासन से साझा करें। उन्होंने बताया कि पांडुलिपि की जानकारी मिलने पर

0: प्रशासन की ओर से नियुक्त सर्वेयर संबंधित स्थान पर जाकर पूरा विवरण प्राप्त करेंगे। इस ब्यौरे को ज्ञान भारतम मिशन के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर बूंदी में विशेष कार्यक्रम रखा गया। माय भारत केंद्र पर हुए इस कार्यक्रम में युवाओं को नई तकनीक के साथ सामंजस्य रखते हुए काम करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और नॉर्वे ने बातचीत रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत करण वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहो भारत रा सामान री दिशावर माए बिक्री 863 अरब डॉलर ताई पूगी। राज्य माए जबरदस्त गर्मी रो दौर, आयुष मंत्रालय हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी। और विश्व संग्रहालय दिवस रे मौके आज प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नॉर्वे हमेशा बातचीत और कूटनीति रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत कीनी है। श्री मोदी आज नॉर्वे रा प्रधानमंत्री जोनस गाहर स्टोरे सागे खबरनवीसा सागे बातचीत कर रहा है। दोनों देशों री ओर जारी भेड़ा प्रेस बयान माए कही जियो कि यूक्रेन और आतुनी एशिया समेत दुनिया रा न्यारा न्यारा हलका माए चल रहा झगड़ा टंटा बीच है, फौजी कार्रवाई किनी समस्या रो हल नी है।
2: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: बातचीत रे दौरान दोनों देशों बीच पर्यावरण और साफ ऊर्जा हलका माए ग्रीन स्ट्रेटजिक भागीदारी ने आगे बढ़ावण माथे ही सहमति बनी। इन तेज अंतरिक्ष हलका माए मदद सारू इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी बीच एक करार माथे ही सही करी ची। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कहो है कि दुनिया री चुनौतियां रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था और दिशावर माए बिक्री लगातार बढ़ रही है। वे आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव री वेबसाइट री शुरुआत रे मौके राखी जा कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री गोयल कहो कि इस साल भारत रा सामान री दिशावर माय बिक्री 863 अरब डॉलर रा लेवल ताई पूगी, जो लारला साल री तुलना माय करीब 5% बत्ती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कहो कि चालू माली साल सारू भारत दिशावर माय बिक्री 1 ट्रिलियन डॉलर रा लेवल ताई पुगाउनो तय किन्नो है। श्री गोयल देश रा कारोबारी समुदाय रे साल 2047 ताई विकसित भारत बनावन रो लक्ष्य हासिल करण सारू पूरी मजबूतियों आगे बढ़वारो भरोसो जतायो।
3: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: कोटारा जेके लोन अस्पताल में लारला दिना जापा वाली लुगाइयां री तबियत खराब हेवन और मौत वेजावन रे मामला में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शुरुआती तौर इलाज रा काम में आवन वाला साजो सामान में संक्रमण या दवाइयां में गड़बड़ी री शंका जताई है। श्री खींवसर आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि इलाज रा काम में आवन वाला शंका जोग साजो सामान और दवाइयां रा नमूना जांच सारू भेजी गया है, जारी रिपोर्ट 23 मई ताई आवण री आस है। वे कहो कि एम्स री टीम ही अस्पताल रो दौरो कर मामला री जानकारी लीनी है और रिपोर्ट आया पाछे जरूरी कार्रवाई करी जावेला।
4: जो मेरा

0: जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनकी 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें यह भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल तो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर यह भी हो सकता है आईवी फ्लूइड जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ सही है, स्टोरेज उसकी सही नहीं हो, दैट कुड बी वन रीजन इसका।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज विधानसभा परिसर में राजस्थान विधानसभा रा 75वां साल रा सिलसिला में विधानसभा रा नुआ प्रतीक चिन्ह रो विमोचन किन्नो। इस मौके वे कहो के ओ प्रतीक चिन्ह राजस्थान री जनता री सोच बतावे है। राज्यपाल कहो के ई प्रतीक चिन्ह में राज्य पुष्प रोहिड़ा खेजड़ी रा रूंखड़ा और विधानसभा भवन रा फोटो शामिल करी चिया है जो प्रदेश री संस्कृति रो दर्शाव करे है। ई मौके विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो के आज विधानसभा रा 4 ऐतिहासिक दरूजा रा राजस्थानी संस्कृति रे मुजब राखी जिया नुआ नाम रे पट्टियां रोई अनावरण करी जियो।
2: शौर्य द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार, ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार जहाँ पे विधायिका की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है, और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें, और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है, और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य द्वार। इस प्रकार 5 द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI नीट पेपर लीक मामला में लाडला 24 घंटा में 5 ठौड़ा छापा मार और कई खास कागजात कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कीना। जांच में परीक्षाओं पहली लीक हुआ केमिस्ट्री और बायोलॉजी रा पेपर लीक हुआ रा मूल स्रोत री ठापड़ की है। एजेंसी महाराष्ट्र रा लातूर एक और कोचिंग क्लास रा निदेशक ने गिरफ्तार कीनो है। ई मामला में हाल ताई जयपुर दिल्ली और लातूर समेत देश रा न्यारा न्यारा हलकाओं 10 आरोपिता ने पकड़ी चिया है। ध्यान जोग है कि ई महीनारी 3 तारीख ने भी आ परीक्षा पेपर लीक री शंका पाछे रद्द करती री ची ही। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य में पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीच मौसम विभाग 19 जिला में आज अरकाल लू बाजण सारू चेतायो है। इस बीच चित्तौड़गढ़ और पिलानी में 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता 1 सप्ताह ताई प्रदेश रा घनखर हलका में गर्मी रो कोप रहवेला। वे बतायो कि इन दौरान सरहदी हलका और लंकाऊ उगनी हलका में कठे कठे लू बाजण री शंका है।
3: अगले 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 4-5 दिन तेज हवाएं प्रभावी होंगी। तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। वहीं ज्यादातर शेष जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें तापमान 42।
1: ए बीच आयुष मंत्रालय जोरदार गर्मी और लू रा कोप न ध्यान रखता थका हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी है। इनमाए बच्चा बुजुर्गा आस वाली लुगाइयां और खुला माए काम करन वाला मजूरा ने खास तौर सावचेती रखन बाबत कही जियो है। एडवाइजरी माए चक्कर आवण, माथा माए जोरदार दर्द वेवण और बेहोशी वेवण री सूरत माए तुरंत 108 या 102 हेल्पलाइन माथे संपर्क करन री राय दी रीची है। ईसा गई लू बचाव सारू बराबर पानी पीवन और तावड़ा बचबारी राय दी रीची है। ईसा गई शरीर न ठंडो राखन सारू छाछ, नारियल रो पानी, नींबू री शिकंजी, तरबूज और खीरा सरीखी चीजा काम लेवन बाबती कही चियो है। आज विश्व संग्रहालय दिवस मनाई चियो। ई मौके प्रदेश भर रा सरकारी संग्रहालय और स्मारका माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। जयपुर और अजमेर समेत न्यारी न्यारी ठोड़ा सैलानिया रो तिलक लगार और फूलां री बारिश कर स्वागत करी चियो। ई मौके देसी परदेसी सैलानिया और जनता ने सगला संग्रहालय और स्मारका माए मुफ्त प्रवेश दियो चियो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर रा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम माए लगाई जी प्रदर्शनी ने निरखी। ई मौके वे कहो के संग्रहालय माए नुआ सुविधा मुहैया करार सैर सपाटा

0: बधाओ दियो जा सके है। वह कहो कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत ने बचावन और सैर सपाटा ने बधावो देवन सारू लगातार काम कर रही है।
1: सभी से यही निवेदन करूंगी आज वर्ल्ड म्यूजियम डे पर कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी हमारे ऐतिहासिक ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, हमारा हेरिटेज है, इसको जाके देखें और सोशल मीडिया में भी पोस्ट करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भी विजिट करें उन जगहों को और इनको समझें, इनको जानें। ये हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। इसको जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यही मैसेज सबको देना चाहूँगा कि ये आज के दिन भी करें और लगातार इस चीज को करें।
0: जैसलमेर रा दिथार हेरिटेज म्यूजियम और पाली रा सरकारी बांगड़ म्यूजियम आए सांस्कृतिक धरोहरा ने बचावन रा मुद्दा माथे विचार गोष्ठियां राखी ची। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर माए वारा रहवास माथा जनसुनवाई कीनी व जनतारी समस्यावां सुन और कई परेशानियां रो मौके निपटारो करायो। ये मौके वह कहो कि सरकार समाज रा हर एक पात्र जना ताई सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावणो ते कीनो है। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं जुड़ी नहरा माए डूढ़ महीना पाछे आज 10,800 क्यूसेक पानी छोड़ी जियो, जो आवता 48 घंटा माए नहर रा आखरी हलका ताई पूग जावेला। इणु सूरतगढ़, रावला, घड़साना और अनूपगढ़ हलका रा किसाना ने साखारी बुआई सारू पानी मिल सकेला। सिंचाई विभाग रे मुजब 1 अप्रैल नू लागू करी जी नहरबंदी रे दौरान नहर री सिल्ट सफाई, टूटी पटड़ियां री मरम्मत, रेगुलेटरां रा रख रखाव और दूजा जरूरी काम करी जिया। दूजकानी नागौर और डीडवाना कुचामन जिला माए नहरबंदी रो आखिरी दौर चाल रियो है, जो 1 सप्ताह ताई चालेला। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और नॉर्वे ने बातचीत रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत करण वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहो भारत रा सामान री दिसावर माए बिक्री 863 अरब डॉलर ताई पूगी। राज्य माए जबरदस्त गर्मी रो दौर, आयुष मंत्रालय हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी। और विश्व संग्रहालय दिवस रे मौके आज प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। ग्रामीण परिवारों के लिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम ममता भाई सर, राम राम।
1: राम राम पेमा भाई, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाई ने अपनो
1: राम राम
0: राम राम सर। देखो साहब, किसान भाई कार्यक्रम भी टेम भी और माँ आया अपने घनी सारी जानकारी देवार वास्ते, तो खेती बाड़ी संबंधी जानकारी देवा, मौसम संबंधी जानकारी देवा, सरकारी योजना अपना वास्ते कई चली रही है अंडी जानकारी देवा, और लारे लारे अपना दैनिक जीवन में काम काज री बात कई वही सके, ये सब जानकारी आप वास्ते लेने आया हाँ। और ममता भाई साहब आप ही बेटा हाँ चौपाल महीने, और चौपाल रे महीने आज आप ही किसान भाई ने जानकारी देवा कि फसल कटाई के बाद में अपने मंडो प्रबंधन और भंडारण कणी तरह करना चाहे सा।
1: बिल्कुल सा, देखो पेमा भाई, फसल री जा कटाई है वो करनो किसान री जो मेहनत है वनो आधो हिस्सो है, लेकिन आपा देखा कि भाई अन्य असली अगर सफलता री बात करा तो कटाई रे बाद आपा फसल ने कणी तरीकों हमारी रखा, कणी तरीकों सुरक्षित रखा, वनो प्रबंधन और भंडारण यह सब एक प्रक्रिया है जो अनाज री गुणवत्ता ने बनायो रखे और कीड़ा मकोड़ो वना ने बचावर वाते बाजार में वनारो सही दाम दिलावा में मदद करे है सा।
0: सही कह रहा हो सर, ई हिसाब को प्रबंधन जो आप करा हाँ तो अपना देश रे महीने हर साल जो 10-15% अनाज जो है वो बर्बाद हो जाए, तो वास्ते कि अगर आप सही तरीकों प्रबंधन करा तो यो जो नुकसान है अणि जो अपना किसान भाई वंचित का रही सके और अपने पैदावार है वो ज्यादा सुरक्षित रह सके सर।
1: बिल्कुल सा, और फसल रे कटाई रे तुरंत बाद आप देखा ने प्रबंधन री बात करा तो कटाई ने अपने बाद में अनाज ने सीधो भंडारण में नहीं भेजो जा सके।

0: आणि कुछ आपणे चरणों गुजरनो पडे, जैसे की देखो गहई वेगी और ओसई वेगी। कटाई ते बात कही वे की पौधा ने अनाज दाणो अलग करनो गहई कहलावे है, और अने बाद हवारी मदद दाणा मु भूसो धूल और सूखी पत्तिया ने अलग कियो जावे है। ओसई अन्य वाते आधुनिक थ्रेशर और कंबाइन हार्वेस्टर उपयोग बड़े हैसा।
1: और देखो सफाई और ग्रेडिंग करवो भी बहुत ही जरूरी व्या करे। वणियों कही है कि आपनों जो उपज है वणी का दाम तय व्या करे, तो अनाज ने वणी को आकार है, वजन है, गुणवत्ता है, वी के आधार पर अलग अलग श्रेणी में अपन बांटन रखना पड़ेगा। अच्छी ग्रेड वाला जो अनाज है वणी के बाजार में मूल्य भी अपन अच्छो मिले। और अणि प्रक्रियाओं कही है कि कंकड़ पत्थर कटियादि का दाणा है ये सब जो अलग वेजावे, और अपना जो अनाज है अपने पैदावार है अणि की ग्रेडिंग वेजावे।
0: और सूखा वाली बात करा तो यो सब महत्वपूर्ण चरण है। फसल रो जो प्रबंधन वे सब बड़ी भूमिका नमी री वे चणी में ताजो कटियो थको अनाज में 18-25% तक नमी वणी थकी वे सके, जो फफूंद और कीड़ा ने न्योतो देवे हैसा।
1: सही कह रहे हो सर। और तावड़ा में सूखा वाली बात करूँ तो देखो अपना देश में सबों पारंपरिक और सस्तो तरीको जो है वो तावड़ा महीने अनाज ने सुखावनो है। अनाज ने साफ फर्श पे यदि आप तरपाल डालिन जो इन्हें फैलावा तो वो सूखवा की प्रक्रिया शुरू हुई जावे। और यांत्रिक सूखा वाली बात करें तो बड़ा पैमाना पर यो काम जो है काम व्या करे। और खराब मौसम या वर्कारी टाइम पे देखो कि अपना हॉट एयर ड्रायर्स नाम की जो मशीन व्या करे वणियों जो है अनाज ने आप सुखाई सका। और मानक नमी का जो स्तर है वण की जांच की बात करना तो देखो अनाज महीने नमी को स्तर 12-14% तक रहना चाहे, तिलहन में 8-9% तक वेणो चावे। अगर दाणा में देखो दांत ना भी चबईन देखा तो कट की आवाज आओ तो हम जाओ कि अपना जो दाणा में अच्छी तरह सुखन वेगी है सा।
0: अबे आप भंडारा प्रकार री बात करा पेमा भाई तो अनाज ने अपनी जरूरत और मात्रा के अनुसार अलग अलग तरीका स्टोर कियो जा सके। जैसे घरेलू और पारंपरिक री आप बात करा तो मिट्टी री जो कोठियां है और बुखारी है। ग्रामीण क्षेत्र में गई वे की मिट्टी और बांसू वणी थकी जो संरचना है वनारो उपयोग वे वे नीमरी जो सूखी पत्तियां है पचा या राख वे वन मिले ने अनाज ने राख्यो जावे। अबे धातु रे ड्रम री बात करा तो यो लोहा पचे एल्युमिनियम रे ड्रम हवारोधी वे वे है जो चूहा और नमी सुरक्षा देवे है सा।
1: सही कह रहे हो सर। व्यावसायिक और आधुनिक स्तर की बात करें तो देखो बोरा महीने आप भंडारण कर रखा जूट या फिर प्लास्टिक का बोरा जो है वणा में अनाज भरन रखा गोदाम में रखा हाँ, पर देखो अपना देश महीने यो काम जो है ज़्यादातर प्रचलित है। और साइलो भंडारण की बात करें तो देखो धातु या पचे कंक्रीट का बढ़िया दिखा जो ऊंचा बेलाकार टावर व्या करे वन का महीना भी यो काम वे तापमान और नमी के नियंत्रण रा वास्ते देखो स्वचलित व्यवस्था में वे और साइलो में अनाज जो है साल तक सुरक्षित रख सका। चूहा है कीड़ा है वणा का खतरों भी एक नीक बराबर रहे। और शीतगृह जो व्या करे जिनमें आप ही आलू है प्याज है फल है सब्जियाँ है अणा को भंडारण कर सका जिन्हें आप कोल्ड स्टोरेज भी कहवा। और फसल का वास्ते कम तापमान जो रहे उनमें कम तापमान में जो है अनाज और सब्जियां ये खराब नहीं व्यवसाय।
0: अब सुरक्षित भंडारण का कुछ नियम री बात कर रहा तो अनाज ने लंबा समय तक सुरक्षित रखवारे वाते गोदाम या भंडारी स्थान री तैयारी बहुत ही जरूरी है सा। गोदाम री सफाई और मरम्मत में आपा देखा अनाज ने राखवा पहली गोदाम ने पूरी तरीके साफ कर लेनो, दीवार री जी दरा है चूहारा जी बिल है वणा ने सीमेंटू बंद कर देना है सा। कीटनाशक रो छिड़काव करनो है खाली गोदाम री दीवारा पे फर्श पे मेलोथियन या पछे अन्य जे अनुशंसित कीटनाशक है वणारो छिड़काव करनो ताकि कई वे की पहलो जे मौजूद है वे कीड़ा मरी जावे। एक वे सटीक स्टेकिंग बोरिया ने सीधो जमीन पे नहीं राखनो, जमीन नमी सोखो बचावर वाते लकड़ी रा जे तख्ता है या बांसी जे चटई है और बोरिया पे रखनो है सा।
1: सही कह रहे हो सर। दूरी बना रखो भी जरूरी है। बोरियां का बहन महीने जो देखो अपना चट्टा है मतलब कि देखो अपना दीवार के ऊपर कम कम 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर दूर अणी में रखना पड़ेगा। और छतों भी देखो पर्याप्त दूरी अपन ने रखनी पड़ेगा ताकि कही कि मैं हवा को आवागमन बने देखो रहेगा वेंटिलेशन जिन्हें आप कह सका। और यो अगर सही तरीकों में व्यो तो जो अनाज में है नमी की मात्रा नहीं रहेगा और खराब व्यव काफ़ी हद तक आप बच ही सकेंगा।
0: कीट और रोग नियंत्रण की बात करा तो भंडारण के दौरान अनाज ने मुख्य रूप में 3 दुश्मनों बचाई रखा कीड़ा वेगिया चूहा वेगिया और फफूंद वेगी। धूमन री बात करा तो यदि अनाज में अपने कीड़ो लागी जावे तो हवा रोधी जो गोदाम है वणी में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या पचे सल्फास री गोलियां उपयोग कियो जावे जणियों निकलवा वाली गैस जो है वह कीड़ा ने खत्म कर देवे। और ध्यान यो भी राखनो कि यह गैस नरी जहरीली वे तो अणियों केवल अपने विशेषज्ञ री देखरेख मिस करना चाहे। चूहारे नियंत्रण रे वाते और उन्हें बचाव रे वाते गोदाम रा जे दरवाजा है वने नीचे लोहारी पत्तियां लगानी, चूहा ने पकड़वा वाला पिंजरा या जिंक फॉस्फाइड जैसी दवा है वणारो प्रयोग करनो चावे सा।
1: सही कह रहे हो सर। जैविक तरीका जो बताई रखा जिनमें देखो घरेलू स्तर पे अनाज में अपना नीम को तेल है, सूखी नीम की पत्तियां है, लौंग को तेल है।

0: अड़ा में भी देखो आप छिड़काव करना तो सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प यो भी एक अच्छो है। और कटाई के बाद में प्रबंधन का लाभ जो देखोगे आर्थिक लाभ सबों पहले तो कहीं का भी फसल को कटाई के तुरंत बाद में यदि बाजार में आमद बढ़वा लाग जावा तो वही स्थिति में अपना दाम कम वही जावा। सुरक्षित भंडारण अगर आप करान किसान भाई तो देखोगे अपना अनाज जो है सुरक्षित रहे विकी कीमत भी अच्छी अपने मिले है। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो अपना देश में बड़ी आबादी जो है साल भर जो है अपना अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित रण में वही सके। गुणवत्ता की बात करें तो देखो अपना प्रबंधन अच्छी तरह करना तो अनाज में स्वाद रंग और पोषण जो है वो अच्छी तरह बने देखो रहे वैसा।
1: फसल री कटाई के बाद प्रबंधन केवल पेमा भाई अनाज ने बचानो ही नहीं है बल्कि यो किसाना री जो आय है वने सीधा तौर पे वने बढ़ावा रो जरियो है। और सरकार अबे पीएम कृषि संपदा योजना कृषि संरचना कोष रे माध्यमो गावा में आधुनिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज रे बनावा रे लिए सब्सिडी भी दे दी है। यदि देश रो हर किसान सुखावा ग्रेडिंग और वैज्ञानिक तरीकों भंडारण करेगा तो भारत में खाद्य जो बर्बादी है वने न्यूनतम करीने कृषि क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाई सके है सा।
0: तो ममता वैसा या तो भी जानकारी और जानकारी में लारे लारे देखो मनोरंजन मेणो छावे आप ही कार्यक्रम में आए हाँ तो सुनावा किसान भाई ने राजस्थानी गीत।
1: हाँ सर।

0: तो ममता भाई साहब, राजस्थानी लोकगीत सुनाए साहब और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और किसान भाई ने देवा मौसम संबंधी जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर मलेले की सूचना रे आधार पर केवा कि आवा वाला दिना में जो है मौसम शुष्क रहे वाली संभावना बताई मिली है। हमारी गति जो है वो 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा रा वेग पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ चलेगा। अधिकतम तापमान 41-43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री रह सके। सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो न्यूनतम 27-36% और अधिकतम जो है वह 8-11% तक रह वाली संभावना बताई मिली है सा।
1: बिल्कुल सा। और पेमा भाई, सामान्य खेती बाड़ी की बात करा तो मिट्टी की नमी ने वणायो राखवारे वाते पगत्यारे बीच री जो सूखी घास है या पचे फसल रा जो अवशेष है वणारो किसान भाई ने उपयोग करनो चाहे और गर्म हवाओं बचाव रे वाते खेतारी जो सीमा है वणी पे विंड ब्रेक स्ट्रिप या पचे जूट री जाली लगानो चाहे सा।
0: सही कह रहे हो सर। अपना किसान भाई जो है गंवारी खेती समूह ज्यादा करे तो वणा ने कहवा कि अनाज के भंडारण में राखवारे वास्ते अपन ने पहले तो भंडार घर जो है वण की अच्छी तरह सफाई कर लेनी चाहे और अनाज ने अच्छी तरह सुखाई लेना चाहे और कूड़ा कचरा जो जलिया दिखा जो और दबे दिखा जो काम है वन में देखो नष्ट कर देना चाहे और दाना जो है नमी वन में 12% को ज्यादा नहीं वेनी चाहे। भंडार घर की छत दीवारा फर्श पर एक भाग जो अपना मेला थिया 50 ईसी कने आपी 100 भाग जो है पानी में मिले छिड़काव करा और यदि पुरानी बोरियां प्रयोग में ले रहा हाँ तो अपन जो वणा ने एक भाग मेला थियान और 100 भाग पानी रे महीने गोल में 10 मिनट तक भिगोइन राखन जो है छाया में सुखाना चाहे सा।
1: बिल्कुल सा। और मूंगरी फसल री बात करा तो अणी टेम पे सिंचाई री बात करा तो अणी टेम पे मूंगरी जो फसल है वणी पे फूल आवा या पचे फली वणवारी अवस्था में वे तो अणी अवस्था में नमी

0: मेरी कमी के कारण कई वे की पैदावार घटी जा अणी वाते हल्की सिंचाई जारी रखे और गर्म मौसम में थिप्स रो प्रकोप बढ़ी सके है अणी वाते नियमित रूप किसान भाई अन्य निगरानी करता रहे सा।
1: और अपना किसान भाई जो है कपास री खेती करे तो बना ने कहवा कि अणी हफ्ता महीने अपन ने किसान जो भाई ने जो कपास की बुवाई के वास्ते खेत ना तैयार कर लेना चाहे और गुणवत्तापूर्ण प्रमाणिक बीज जो है कहीं भी विश्वसनीय अपना स्रोत है जो है वणियों अपन ने खरीद करनी चाहे।
0: अभी बेल वाली साग सब्जियां की बात करा तो मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखवारे वाते फसल ने नियमित रूप हल्की सिंचाई देनो है और बेलारे सहारे वणा ने राखनो है। फलारी जो मखिया या पचे पाउडरी मिल्यूरी नियमित रूप निगरानी करनो और आवश्यकता अनुसार अनुशंसित से कीटनाशक है वणारो छिड़काव वाणी टेम्पे किसान भाई करे सा।
1: जायद मूंगफली की जो है खेती बाड़ी भी किसान भाई करे तो वणा ने कहवा कि खरपतवार का प्रकोप ने नियंत्रण करवारे वास्ते और उचित पेंगिंग के वास्ते अपन इंटरकल्चर ऑपरेशन और हाथ घुड़ाई की आवश्यकता पड़े है तो यो काम भी अपन किसान भाई ने करनो पड़ेगा।
0: भिंडी की बात करो तो भिंडी में यदि फलदार आकार 5 इंचू लंबो वे जा तो किसान भाई तुड़ई कर लेवे और तुड़ई के बाद में भिंडी की जो फसल है वणी में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर उधर यूरिया डालनो है सा।
1: और गर्मी के टाइम पे हरा चारा की बात करें तो देखो अणी टाइम पे अपना अणी महीना महीने हरा चारा की कमी काफ़ी वही जा भैया बड़ी आम बात है और अणी वास्ते कहिए अपना हरा चारा के वास्ते फसल जो है वन में देखो ज्वार है बाजरा है मक्का है लोबिया है आदि की बुआई जो कर अणी को प्रबंधन करना चाहे सा।
0: और पेमा भाई अणी टाइम पे गर्मी नरी पड़ी रही है तो आपने ढांडा चौपारे वाते किसान भाई छाया री व्यवस्था करे वणाने छाया में बांधे और वणारे हवा आवे जैसी जगह पे वणाने बांधे और वणाने पीवारे पानी री व्यवस्था करे स्वच्छ पानी वणाने पिलावे और वणाने गर्मियों पूरी तरीके अपने पशुओं रो भी बचाव करे सा।
1: तो या तो भी देखो सा जानकारी और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सुना एक और राजस्थानी गीत।
0: हाँ सा।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो देखो पेमा भाई, किसान भाई ने प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत सुनाए और अभी देखो कार्यक्रम में टाइम भी है योजना री जानकारी देवारो। तो देखो आज आपा किसान भाई रे वाते जानकारी लेने आया हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कई वेवे है सा। देखो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह एक बहुत महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी योजना है और उन्होंने मुख्य उद्देश्य

0: तेसरा जे किसान है वणा ने खेती किसानी और वणी जुड़ी थकी अन्य जरूरत रे बेहद काम री ब्याज दर पे आसानी कर्ज रो लोन उपलब्ध कराणो है सा। अणि योजना री शुरुआत री बात करा तो या साल 1998 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक री सिफारिश पे की गई है सा।
1: सही कह रहे हो सर। अणि योजना का मुख्य उद्देश्य कही है यह सब जानकारी दिया और तो देखो कि पारंपरिक रूपों अपना देश र महीने छोटा और सीमांत किसान जो है काफ़ी संख्या में है और वणा की जरूरत देखा तो बीज है, खाद है, कीटनाशक खरीदवार वास्ते देखो वणा ने जरूरत पड़े है और वे पचे साहूकार या जमींदार का ऊपर निर्भर रहे तो वे पचे की ब्याज का उन्हें चक्कर में भी पड़ जावे। तो वणा ने राहत देवार वास्ते जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई है, जिन्हों कही है कि किसान भाई कणी के ऊपर निर्भर नहीं रह सके और सरकार का माध्यमों जो है वह आर्थिक मदद ले सके सा।
0: और अणी योजना में आपा देखा फसला री जो बुवाई है और उन्हें कटाई के बाद अल्पकालिक ऋण मिले, फसल की कटाई के बाद में खर्चा रो प्रबंधन भी अणी योजना तहत वे सके, कृषि उपकरण की खरीद जैसे ट्रैक्टर वे गयो, थ्रेसर वे गयो, अन्य मरम्मत या पचे अणा की खरीद भी अणी योजना के माध्यम वे सके, ऋण मिले जो घरेलू उपयोग री तात्कालिक जरूरता पूरी वे सके, पशुपालन वे गयो, डेयरी वे गई, मत्स्य पालन वे गयो और अन्य तरीका री संबद्ध जो गतिविधि विद्या है खेतीवाड़ियों जुड़ी थकी वे सब आप आनी योजना के माध्यम पूरी कर सका सा।
1: अब देखो प्रमुख विशेषता और ब्याज दर की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में सबों बड़ी खासियत यह है कि लचीलोपन अणि में वे अणि योजना में और किसान मण की शर्त जो है विके हिसाब काम कर सके। जिसान की देखो अपने ब्याज दर और सब्सिडी तो कार्ड र महीने सामान्य ब्याज दर 9% व्या करे लेकिन सरकार की तरफ उन्हें 2% ब्याज दर पर सहायता उपलब्ध कराई जावे, जणियों के 7% तक की जो दर है वह राहत मिल जावे। समय पर भुगतान के और इनाम की बात करें तो किसान भाई जो है लोन की राशि को समय पर सीमा में जो है वण में रहता दिखाई भुगतान करे और बैंक ने लौटावे तो देखो सरकार की तरफ 3% अतिरिक्त छूट भी वण में दी जावे। तो अन्य प्रकार कही कि ईमानदार किसान जो है प्रभावी रूप जो केवल 4% वार्षिक ब्याज दर में भी अने को लाभ ले सके सा।
0: लोन री सीमा री बात करा तो किसान री भूमि, फसल रजे प्रकार, आय रे आधार पे क्रेडिट सीमा तय की जावे है। वर्तमान में 1,60,000 रुपया तक आपा देखा किसान क्रेडिट कार्ड लोन रे किसान ने अपनी जमीन पे बंधक नहीं राखनी पड़े और वणा ने लोन मिल सके। कार्य वैधता की बात करा तो एक बार में किसान क्रेडिट कार्ड बनवारे बाद अन्य जो वैधता है वह 5 वर्ष री वे और हर साल किसान ने अच्छो रिकॉर्ड देखवाने वणा ने किसान क्रेडिट कार्ड सीमा पे 10% तक री बढ़ोतरी भी की जा सके सा।
1: और सुरक्षा कवच की बात करो तो किसान क्रेडिट कार्ड धारक जो भी किसान भाई है वणा ने अधुसूचित जो फसलां है वण के वास्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जणी ने आपी PMFBY भी कहवा हाँ और अणि को लाभ भी स्वतः और स्वैच्छिक रूप में मिल सके और फसल खराब व्यवहार की स्थिति में वन की सुरक्षा भी दी जावे और इसके अलावा दुर्घटना बीमा की सुविधा भी अणि में मिले सा।
0: पात्रता री बात करा तो अणी में कौन आवेदन करी सके तो अणी योजना रो जो दायरो है नरो व्यापक है। अणी में आपा देखा सभी जे व्यक्तिगत किसान है, संयुक्त किसान जो भूमि रा मालिक है, काश्तकार वेगिया पट्टेदार और बटेदार किसान जो दूसरा री जमीन पे खेती करे, किसान जे स्वयं सहायता समूह या पचे संयुक्त देयता समूह है वे सब पात्र है सा।
1: सही कह रहे हो सर। इसके अलावा देखो कि पशुपालन और मछुआरा जो व्याकर है वे भी अणि योजना को लाभ ले सके। हाल ही के वर्षा में सरकार की तरफ डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जैसे काम में भी देखो किसान क्रेडिट कार्ड को दायरो बढ़ाया गया है। वणियों कही कि बिना गारंटी लोन के भी देखो 2 लाख रुपये तक को लाभ किसान भाई ले सके सर।
0: और आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया की बात करा तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा वाते प्रक्रिया सरकार अपनारी बेहद सरल और डिजिटल कर दी दी है। आवेदन रे वाते कुछ दस्तावेजा की आवश्यकता पड़े वणी में पहचान पत्र वे मैं आपा देखा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पचे ड्राइविंग लाइसेंस वे सके सा। निवास प्रमाण पत्र में आधार कार्ड या बिजली रो बिल वे सके। भूमि रा दस्तावेज में जमीन री जमाबंदी, नकल, खतौनी, खसरा रिपोर्ट और बैंक द्वारा मांगा गया राजस्व प्रमाण पत्र भी वे सके सा।
1: सही कह रहे हो सर। इसमें पासपोर्ट साइज का फोटो है और बैंक में जो भी अपना नंबर लगाई रखा है वो आप इनमें काम में ले सका और आवेदन करो बहुत आसान है। अपना क्षेत्र को कोई भी वाणिज्यिक बैंक वेगियो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वेगियो, सहकारी बैंक वेगियो या पचाणियों जुड़ी दिखी कोई भी संस्था है तो वन में जाइन आप लाभ ले सका। इसके अलावा PM किसान पोर्टल जो है वन के माध्यम भी ऑनलाइन आप आवेदन कर सका और सरकार का निर्देश है कि दस्तावेज सही तरीकों में तो आप बैंक र महीने जाइने 14 दिन र महीने किसान क्रेडिट कार्ड को लाभ ले सका सा।
0: तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना अपना ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन ने बढ़ावा देवार।

0: आणि मैं केवल किसानों ने साहूकारों चंगुल मुक्त कराणो है बल्कि आधुनिक चा कृषि तकनीक है उन्नत बीज उर्वरक रा उपयोग में सक्षम बनाणो है और संकट रे टेम पे यो कार्ड किसानों ने एक मजबूत और आर्थिक ढाल साबित हुए जिन्हें देश री खाद्य और सुरक्षा ग्रामीण समृद्धि दो ही सुनिश्चित हो सके।
1: तो ममता भाई साहब, या तो भी जानकारी और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा किसान भाई ने एक और राजस्थानी लोकगीत सुनावा सर।
0: हाँ सर।

0: तो ममता भाई साहब किसान भाई ने जानकारी दी थी और लारे लारे राजस्थानी लोकगीत भी सुने और अब कार्यक्रम ने आगे बढ़ाता दिखा जानकारी देवा के ई मित्र और सरकारी लाभ अपने वास्ते कई वे सके सा।
1: तो देखो पेमा भाई, ई मित्र और सरकारी लाभ की बात करा तो राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस क्रांति या हेसा वो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई मित्र योजना सुशासन और डिजिटल इंडिया की एक बेहतरीन उदाहरण है। सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल पे आधारित अणि महत्वाकांक्षी परियोजना रो मुख्य उद्देश्य राज्य रा जो नागरिक है वणारी सभी सरकारी सेवा और सरकारी योजना रे लाभ रे वाते एक ही छतरे नीचे पारदर्शी और त्वरित तरीकों उपलब्ध कराणो है सा।
0: अब देखो सा, ई मित्र कई व्या करे और यो कितर काम करे यो जानकारी देवा कि ई मित्र एक एकीकृत ई प्लेटफॉर्म जो है वन के माध्यमों कई है कि 500 अधिक तरह की सरकारी और निजी सेवा जो है वह नागरिका ने मिल सके और ऑनलाइन तरीकों मिल सके। राज्य का हर गांव डाणी कस्बा रा महीने वार्ड रा महीने युवा जो है वना ने ई मित्र कियोस्क संचालित करवा का लाइसेंस दिया लगा है। अणि के माध्यमों कई है कि सरकार ई मित्र प्लस जो योजना है वह भी चलाई रखी है और शुरुआत अणि की किता दिखाई। देखो अपने एटीएम के तरफ जो है या ई मित्र प्लस योजना काम कर रहे है और इक लारे लारे मानव सहायता जो है वन के माध्यम ई मित्र को संचालन वे रो है सा।
1: अबे बात करा पेमा भाई, तो ई मित्र रा माध्यमों मिलने वाला प्रमुख लाभ कई कई है तो ई मित्र ने सरकारी कार्यालय रा चक्कर काटवा और बिचौलिया रा शोषण पूरी तरह समाप्त कर दी दो है। अन्य माध्यमों मिलने वाला प्रमुख लाभ आपा देखा तो महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र और दस्तावेज जो नागरिका ने अपनी पहचान और विभिन्न योजना रे वाते कई तरीका रा प्रमाण पत्र की आवश्यकता वे ई मित्र रे जरिए ये सभी डिजिटल रूप सत्यापित वे ने आसानी बन सके। अणि में मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, जन्म और मृत्यु और विवाहों पंजीकरण भी शामिल है सा।
0: सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना की बात करें तो बुजुर्ग है, विधवा वर्ग है, दिव्यांग वर्ग है, अणा की सरकारी पेंशन जो शुरू की दी जा सके तो अणि की प्रक्रिया वह ई मित्र का माध्यम सरल तरीका में वे सके। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के वास्ते देखो ऑनलाइन आवेदन किया जा सके और हर साल जो है अणि को वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सके। यह सब काम ई मित्र का माध्यम वे सके सा।
1: और स्वास्थ्य और जन कल्याणकारी योजना की बात करा तो राजस्थान सरकारी सब बड़ी स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और स्वास्थ्य बीमा जोड़िया जन आधार कार्ड वेगियो वणारा नामांकन में सुधार वेगियो डाउनलोडिंग रो काम वेगियो ये सब ई मित्र रे जरिए वेवे है और अन्य माध्यमों गरीब जे परिवार है वे अस्पताल में मुफ्त इलाज री सुविधा रो लाभ उठाई सके और उन्होंने रास्तों मिल सके सा।
0: किसान भाई रे वास्ते देखो ई मित्र वरदान है क्योंकि किसान भाई जो खेतियों जुड़ी दी के सरकारी योजना जत्री भी है वंडो लाभ अणि के माध्यम ले सके सा।

0: बचत हुए। पहले ग्रामीण क्षेत्र में लोग बाग जो है एक प्रमाण पत्र वास्ते जिला मुख्यालय पे तहसील मुख्यालय पे जानो पड़तो हो वहाँ ने, और अभी वो काम अपना घर बैठे ही जो है अपना घर का ई मित्र पे या अपना गांव में डाणी में आसपास में जितने भी ई मित्र है वन के माध्यम वे ही जावे। तो आप ही मजदूरी छोड़न जो है अपना गाँव छोड़न दूसरी जगह पर काव जावा और काम वे तो और अपने समय खराब वे तो वन में वंचित वेगी सा।
1: अबे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक की बात करा तो ई मित्र पे हर सेवारी जो दर है सरकार द्वारा निर्धारित है। ऑनलाइन रसीद मिलवारे कारण बिचौलिया पे अतिरिक्त पैसा मांग अपने कोई भी मांगे तो मनी गुंजाइश भी अटे खत्म वेगी है सा।
0: और रोजगार सृजन की बात करा तो देखो सरकारी योजना के माध्यम जुड़ी दिखी तो जितना भी बेरोजगार युवक है वे ई मित्र कियोस्क को संचालन करवा लगा है तो गाँव और महीने जो है युवा वर्ग बनाने रोजगार मिल सक रही हो सा।
1: तो देखो ई मित्र योजना राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था वन लोकतंत्रीकरण रे वाते है अणि तकनीकी अपने आम आदमी रे दरवाजे तक पहुंची ने अंतिम छोर पे जो बैठो व्यक्ति है वन सरकारी लाभा ने सुनिश्चित करनो है और डिजिटल साक्षरता ने बढ़ावनो सरकारी योजना ने बिना कणी भेदभाव रे हर नागरिक तक पारदर्शिता तरीका पहुंचानो है सा।
0: देखो सा या तो भी जानकारी कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा सुना एक और राजस्थानी गीत।
1: हाँ सा।

0: सो राजस्थानी लोकगीत सुनाए और अबे किसान भाइयों ने जानकारी करावा कि आज है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस जिन्हें आप HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहवा हाँ, यो हर साल 18 महीने वैश्विक स्तर पर मनायो जावे। यो दिवस एड्स जैसी जो जानलेवा बीमारियां है वणियो बचाव रे वाते एक प्रभावी और सुरक्षित टीका की खोज में जुटा दुनिया भर रा वैज्ञानिक, शोधकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी और स्वयं सेवका रे प्रति आभार व्यक्त करवारो दिन है सा। लारे यो आम जनता में HIV री रोकथाम और वणियो टीका जुड़िया थका शोध रे प्रति जागरूकता करवारो भी एक महत्वपूर्ण मंच है सा।
1: अब सा यो दिवस क्यों मनाया जावे इनके बारे में बताओ कि विशेष दिवस जो मनाया जावे इनकी पृष्ठभूमि यह है कि 18 मई 1997 का दिन जो है तैयार भी ही अमेरिका का तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो है वहाँ मार्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में अपना एक ऐतिहासिक भाषण देता दिखाई दुनिया भर में आह्वान किया है कि आगामी 10 साल तक के महीने जो है HIV जुड़े दिखा जो भी जड़ू खत्म करना है अन्य और एक प्रभावी टीकाकरण जो वेणो चावे वणिंग विकसित करवा वास्ते एकमात्र रास्ता बताया दिखाई अन्य दिन की शुरुआत की दी।
0: और राष्ट्रपति क्लिंटन आणि विजनरी भाषण की याद में आणि दिशा में वैश्विक प्रयासा ने गति देवा रवाते अगला ही वर्ष यानी 18 मई 1998 ने पहली बार विश्व एड्स टीकाकरण दिवस आधिकारिक रूप में मनायो गयो। वध्यू लेने आज तक हर साल 18 महीने यो जागरूकता अभियान चलायो जावे ऐसा।
1: अब आने दिवस ने मनाओ का मुख्य उद्देश्य यो है कि जागरूकता बढ़ाओ आम जनता रा महीने यो समझाना है कि एड्स सामान्य इलाज जो है और टीका है वणकम में कई अंतर है और समाज में यो एक बेहतर तरीका आप एड्स ने रोकथाम रा वास्ते मुक्ति रा वास्ते वैक्सीन के वास्ते क्यों जरूरी है।
0: और अणि में वैज्ञानिक रे आभारी बात करा तो वणा 1000 शोधकर्ता और चिकित्सा विशेषज्ञ री कड़ी मेहनत और सम्मानित करनो और प्रयोगशाला में दिन रात अणि लाइलाज बीमारी रो तोड़ ढूंढवा में हेसा।
1: वैश्विक निवेश और प्रोत्साहन की बात करें तो देखो सरकारी और निजी संस्थान और वैश्विक स्वास्थ्य संगठन जो है वणारा महीने एड्स वैक्सीन के अनुसंधान रा वास्ते अधिक और अधिक फंड इकट्ठो कियो जा सके समाधान जो है संसाधन जुटाया जा सके अनका वास्ते प्रेरित करवा रो धन है।
0: HIV वैक्सीन का निर्माण में चुनौतियां और दशकों शोध और अरबों डॉलर खर्च करवा पे भी आज आप देखा कि HIV की पूरी तरीके सफल व्यावसायिक टीको बाजार में नहीं आई पायो है और अन्य पीछे वैज्ञानिक कहीं रूप में भी वणा रवाते ये चुनौतियां वणी थकी है सा।
1: देखो साहब वायरस तेजी के रूप में बदलवो की बात करना तो देखो HIV को वायरस जो है मानव शरीर में प्रवेश करे और एक बहुत तेजी जो है अपना रूप लेता दिखा जेनेटिक संरचना बढ़ना बदले है और एक टीको कणी भी एक रूप ने असर डाले और लेकिन बदलता दिखा रूप में देखो बेअसर भी वेवैसा।
0: सामान्य वायरस से शरीर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता ने सक्रिय करे है और यहाँ पर देखा जनियो शरीर एंटीबॉडी बने हैं लेकिन HIV सीधो अपनी जो कोशिका है यानी सुरक्षा तंत्र है वहीं पे हमलों करने वने नष्ट कर दे वैसा।
1: वैश्विक उप प्रकार की बात करें तो दुनिया रा महीने अलग अलग हिस्सा रा महीने HIV का अलग अलग स्ट्रेन मतलब प्रकार पाया गया है अणु कई है एक ऐसा टीका बनावना मुश्किल रह जावे जनियो की दुनिया का सभी मरीज जो है सामान्य रूप प्रभावी वे।
0: और वर्तमान स्थिति में आपा देखा कि उम्मीद री किरण निराशा रे बीच में आधुनिक जे विज्ञान है वे नई उम्मीद भी जगाई रहा है। वर्तमान में आपा देखा कई तरीका रा वैक्सीन कैंडी क्लिनिक ट्रायल भी मानव परीक्षण रे वाते विभिन्न चरणा में आया है सा।
1: कोरोना काल के दौरान भी देखो जो तकनीक है सफलता पाएगी वणमेर वणी प्रकारों कई के HIV वैक्सीन में भी देखो कणी भी तरह भी काम वही सके और अणमे वैश्विक कंपनियां जो है वेको परीक्षण कर रही है सा।
0: वैज्ञानिक अभी 80 एंटीबॉडीज विकसित करवा पे ध्यान केंद्रित कर रहा है जो HIV रे तेजियों बदलता रूपा ने पहचानिन वने खत्म कर सके
1: और जटा तक टीका नहीं बने वटा तक जो है बचाव ही उपचार है अणको संदेश जनता तक पहुंचावनो है और दवा जो है वण का जरिए HIV ने संक्रमित व्यक्ति ने एक लंबो और सामान्य जीवन जीवा का प्रयास करना है और बीमारी ने एक निश्चित तौर पर ने खत्म करवा को प्रयास करना है।
0: तो देखो विश्व एड्स टीकाकरण दिवस जो है अपने याद दिलावे कि विज्ञान भले ही बड़ी दुनिया तय कर ली दी है लेकिन HIV मुक्त दुनिया रो सपनो अभी भी अधूरो है। तो यो दिन केवल वैज्ञानिक कार्य जो जिम्मेदारी है वन्य बात नहीं है बल्कि समाज रो जो हर वर्ग है वनी भागीदारी रे बात है ताकि एड्स से जुड़े थका सामाजिक कलंक मिटाया जा सके HIV पीड़िता ने सम्मानजनक जीवन मिल सके और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति निरंतर शोध और वैश्विक सहयोग रो वो दिन दूर नहीं यदि दुनिया रे पास आनी महामारियों बचावर बातें भी अपनो अचूक हथियार वेगा सा।
1: देखो सा या तो भी जानकारी कार्यक्रम में बढ़ावा और जाता जाता एक और राजस्थानी लोकगीत सुना सा।
0: हाँ सा।

किसान ग्रामीण परिवारों के लिए अभी खेती और घर कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था। कार्यक्रम आप आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से सुन रहे थे। आइए अब सुने फिल्म संगीत।

प्यार चुकता नहीं। इस फिल्म का यह गाना था लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। SH बिहर के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की ही आवाजों में यह गाना फिल्म बेताब से, गीतकार आनंद बख्शी, धुन RD बर्मन की।

एतबार फिल्म का ये गाना था भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में, संगीत पप्पी लहरी का था। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें, फिल्म गुलामी। कित के बोल गुलजार के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आई अब सुने आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत बद्ध किया हीरो फिल्म का ये गाना, माफ कीजिए अवतार फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है। हमारे दिल्ली केंद्र से अब समाचार लिखे जाएंगे, पहले हिंदी में और 9 बजे अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत

0: भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के

0: उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
1: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित

0: लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
3: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
2: Prime Minister Modi said, the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
3: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
3: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अभी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का गायन। पहले सुनते हैं राग जय जयवंती।

शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म चोरी चोरी से, आवाज लता मंगेशकर की। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक।
1: आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

मधुमति फिल्म का ये गाना था, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। शैलेंद्र के बोल थे सलील चौधरी का संगीत।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे माया फिल्म का गीत, संगीत सलिल चौधरी का था। किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजें, फिल्म पेइंग गेस्ट। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार एस टी बर्मन।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से सुन रहे हैं। अगला गीत सुनते हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, फिल्म ममता से। गीत के बोल सहर लुधियानवी के हैं, संगीत रोशन का।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में यह गाना था फिल्म बात एक रात की से। संगीत एस टी बर्मन का था। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजें। फिल्म श्री 420। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें,
3: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

भरोसा फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीतकार थे रवि। अगला गाना हमने आपके लिए चुना है फिल्म ताजमहल से। साहिर लुधियानी के बोल हैं, रोशन का संगीत और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

aquí. ये इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

राम और श्याम फिल्म का एक गाना था, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। शकील बदायूनी के बोल थे, संगीत नौशाद का था। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं तक। कार्यक्रम का यह सफ़र आपने तय किया दिलीप शर्मा के साथ।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले पांच वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 266.6 यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा अभी समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद।